ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026। सवेरे के 5:57 होने को है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को

0: मिलाकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। आइए प्रातः की वेला में करते हैं स्तुति परमपिता परमेश्वर की, कार्यक्रम वंदना के माध्यम से।

श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त को पहचान सकें, हम अच्छे की कीमत जान सकें। लोग इसीलिए बदल जाते हैं कि हम उनके चेहरे आसानी से पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे।

श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा।

जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में जो भी जितना व्यक्ति खाली होता है, सबसे ज्यादा दुखी भी वही होता है।

जीवन में जो भी कर्म करो वो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह करो, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह करो, भक्ति करो तो हनुमान की तरह करो, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह बनो।

वंदना अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:35 आइए अब रूबरू करवाते हैं आपको आज प्रसारित और रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से।

आपसे थोड़ी देर में यानी कि सवेरे 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, संगीत सतीश भाटिया का। 6:50 पर खेती में आज जून माह के कृषि कार्य आप सुनेंगे। 7:00 सदाबहार नगमे। 7:45 पर सुगम संगीत प्रोग्राम।

सवेरे 8:30 पर नमस्कार उदयपुर सुनिएगा फिट लाइफ मंडे। विश्व महासागर दिवस पर बातचीत होगी, प्रमुख स्थानीय खबरें आपको बताएंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्य आदतें इस बारे में बात करेंगे, ध्यान और मानसिक शांति के लाभ। सवेरे 9:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा उमंग। 10 बजे यादों के झरोखे से, 11 बजे घोखड़ा प्रोग्राम राजस्थानी गीतों पर आधारित होगा और 11:30 पर सुगम संगीत। 12 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 1:05 पर महिला जगत, इसमें आप सुनेंगे नए स्टार्टअप की कहानी पर आधारित थीम और महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं। बातचीत होगी डिजिटल सखी महिला सशक्तिकरण की नई पहचान पर, साथ ही साथ चर्चा करेंगे विश्व महासागर दिवस और बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर।

दोपहर 1:45 पर विकास चर्चा होगी और 2:30 पर आप सुनेंगे कृषि जगत। किसान री बात होगी फसल सिंचाई और जल संरक्षण पर राजस्थानी लोकगीत आपको सुनवाएंगे। दोपहर शाम 5 बजे युवाणी प्रोग्राम होगा विज्ञान और तकनीक पर, साथ ही साथ ऐतिहासिक स्थान की आपको जानकारी देंगे और आज के इतिहास के बारे में शहर बाजार और खेल समाचार भी आपको बताएंगे। 6:05 का वक्त रहेगा फिल्म संगीत का और 6:40 पर जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे जयपुर अजमेर से। 7 बजे खेती और घर प्रोग्राम होगा जिसमें होगी चौपाल रिपात, कृषि स्टार्टअप से बदलती कृषि, राजस्थानी गीत आपको सुनाएंगे, जानकारी देंगे एग्रोमेंट एडवाइजरी और साथ ही साथ योजना के बारे में हम आपको बताएंगे अटल भूजल योजना।

रात 8 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 9:15 पर सुगम संगीत होगा, 9:30 पर शास्त्रीय संगीत और रात 10 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुनेंगे। तो ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रम।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:40 होने को है। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, संगीत सतीश भाटिया का है। इसकी 103वीं कड़ी हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्रीराम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगी।

श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे, संगीत सतीश पाटिया का था। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:50। किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती में आज।

सवेरे के 7 बजने को है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज ये इश्क नहीं आसान फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है अनवर ने।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारी माँ।
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे
0: और छोटी
1: ये तुम्हारे बाप
0: और ये
2: मेरी गुड़िया की
0: माँ। दादी आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो
0: क्या
3: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

झुक गया आसमान इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम

खयाम का संगीत आप सुन रहे थे उमराव जान में आशा भोसले की आवाज में। अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

पिघलता आसमान फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 7:45 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत आज के इस प्रोग्राम में, कैलाश खेर के गाए गैर फिल्मी गीत।

श्रोताओं, कैलाश खेर को आपने सुना सुगम संगीत प्रोग्राम में, और इसके साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब होता है समाप्त। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
3: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
5: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।

0: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रूपये की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यदि किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो काम करने के तरीकों को बदलिए, इरादों को नहीं।
1: बिल्कुल, और इरादा हमारा भी यही है कि हम हर बार कंटेंट नया लाते हैं, लेकिन नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम तो वही रहता है जो चल रहा है। तो आज है सोमवार, और सोमवार की सुबह सबसे पहले तो आप सभी से हम दोनों करते हैं नमस्कार। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त बीना,
0: और मैं हूँ भगवती लक्षकार। और तो आज के अगर प्रोग्राम पर नज़र डालें तो आज है विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। इन पर हम बातचीत करेंगे, स्थानीय खबरें आपको बताएंगे।
1: बिल्कुल, और आज है आकाशवाणी का स्थापना दिवस, और उसके अलावा हेल्दी हैबिट्स में ध्यान और मानसिक शांति के लाभ के बारे में हम बात करेंगे। सिटी अपडेट्स में हमारा जो सिटी पैलेस है, राजमहल, उसके आसपास की सांस्कृतिक गतिविधियों की चर्चा करेंगे, और साथ में होगा लास्ट में लिसनर्स कनेक्ट, जिसमें हमारे श्रोताओं से हम कहेंगे कि वो हमें अपने संदेश भेजें कि वो इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं या उनके बारे में कोई अपना विचार रखते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
0: तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, हमारे संदेश जो है आप ज़रूर हमें पहुंचाएं, और आपके संदेश जो है हम पढ़कर आपको सुनाएंगे 9:10 के बाद।

0: बिल्कुल, हमने भी प्यार किया है हमारे श्रोताओं से, और आज हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष, यानी कि आज ही के दिन 8 जून को जो है आकाशवाणी की स्थापना हुई थी, और 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था।
1: आकाशवाणी का जो आकाशवाणी नामकरण है ना, वो वर्ष 1956 में हुआ था। तो ऑल इंडिया रेडियो से उसका हिंदी नाम दिया गया था आकाशवाणी। पहला प्रसारण भारत में संगठित रेडियो के रूप में 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे या मुंबई स्टेशन से हुआ था, लेकिन इसके बाद 8 जून 1936 को आधिकारिक रूप से इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था।
0: और इसका ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और ये दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक गिना जाता है, जो कि वर्तमान में 23 भाषाओं और 189 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है, और 500 से अधिक जो है इसके चैनल है।
1: बिल्कुल, और लगभग पूरे ही भारत में इसके जो रेडियो स्टेशन है वो फैले हुए हैं, और हमारे श्रोताओं को सबसे बेस्ट चीज़ जो रेडियो के माध्यम से मिलती है वो ये कि वो अपना काम करते हुए रेडियो सुन सकते हैं, अपना मनोरंजन के साथ साथ तमाम जानकारियाँ, देश विदेश की खबरें, और इसके अलावा भी अचानक से जब भी कोई आपातकालीन परिस्थिति आई है, रेडियो ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: और बिल्कुल, आकाशवाणी उदयपुर ने भी जो है अपने स्थापना दिवस यानी कि 1967 से लेकर अब तक है ना लगातार श्रोताओं से कनेक्ट किया है, और इसका जो क्षेत्रीय विस्तार के तहत मेवाड़ क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति, लोक संगीत, सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस केंद्र की शुरुआत की गई थी, और उस समय ये AM पर चलता था, और उसके बाद में इसका एक और FM लेक सिटी सेवा भी शुरू की गई, जो
1: बिल्कुल
0: कि 10 किलोवाट पर है, और हम लगातार हमारे श्रोताओं से इसके मार्फत कनेक्ट रहते हैं।
1: बिल्कुल, हमारा जो ये नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम है भगवती, वो भी हमारे AM यानी मीडियम वेव के साथ साथ हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले श्रोता यानी जो FM लेक सिटी के श्रोता हैं वो भी इसे सुना करते हैं। तो आप सभी को आपका अपना ये आकाशवाणी स्थापना दिवस बहुत बहुत मुबारक हो, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपना ये स्नेह बरसों बरस यूं ही लुटाते रहें।
0: बिल्कुल, और हमें लिखे आपके संदेश 9462697568 WhatsApp पर।
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल, बजने दीजिए आपके रेडियो को और कहीं मत जाइए, आप सुन रहे हैं नमस्कार उदयपुर।
1: तो आज हम एक और दिवस मना रहे हैं, उसका नाम है विश्व महासागर दिवस। भगवती, हमारा जो धरती का हिस्सा है उतना ही उतना लगभग या उससे भी बहुत ज़्यादा पूरा महासागर फैला हुआ है इस पूरी धरती पर, है ना, जहाँ पर स्थल के अलावा जो जल जीवन है वो बहुत बड़ा है। और विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है, और इस साल जो इसका थीम है वो है पुनर्कल्पना, हमारे जाने पहचाने संसार से परे हमारे महासागर के साथ एक नया रिश्ता। और वैश्विक स्तर पर इसका एक एक्शन फोकस है स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लैनेट, यानी हमारे नीले ग्रह के लिए मजबूत समुद्री संरक्षित क्षेत्र।
0: पहली बार 1992 में ये रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान मनाया गया था, और वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से 8 जून की घोषणा की विश्व महासागर दिवस मनाने के लिए। और अगर हम बात करें इसके महत्व की, तो महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरते हैं, और महासागरों में रहने वाले फाइटोप्लांकटन पृथ्वी के ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं।
1: बिल्कुल, तुम कल्पना करो भगवती कि अगर हमारे यहाँ ये बारिश ही ना हो तो क्या हो,

0: ये जो महासागर है, यही है पूरा जिसकी जिम्मेदारी है ये मानसून लाने की, जिसका हम अभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उमस झेल रहे हैं। तो ये जो सारा मानसून का चक्र है या ये ऋतुओं का चक्र है, इसमें ये सारे महासागर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारी धरती की 50% से भी अधिक ऑक्सीजन, जैसा कि अभी तुमने बताया, महासागरों में रहने वाले छोटे जीवों प्लैंकटन से आती है। यानी हमारी हर दूसरी सांस समंदर की देन है। इतना ही नहीं, इंसानों की जो फैलाई हुई गर्मी है उसका 90% हिस्सा ये महासागर सोख लेते हैं ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे।
1: और 80% से अधिक वैश्विक व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। महासागर में लाखों जीव जंतु और पौधे रहते हैं जो कि जैव विविधता का सबसे बड़ा हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर खतरे की बात करें ना, तो खतरे भी बहुत सारे हैं। यानी कि हम जो है प्लास्टिक, कचरा, रसायन, तेल, रिसाव आदि महासागर प्रदूषण के मुख्य कारणों में से गिने जाते हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन, समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो रही है। और स्तर की अगर हम बात करें तो मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक औसत समुद्र स्तर 1920 से अब तक 15 से 20 सेंटीमीटर, यानी कि 6 से 8 इंच बढ़ चुका है।
0: बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे, ये समुद्र का विस्तार और बढ़ेगा और ये स्थल का जो एरिया है धरती का, इसके ऊपर और ज़्यादा जगह घिरेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अब हमारे को परिस्थिति की संतुलन बनाने की, जो ग्लेशियर हैं वो अपने मूल स्वरूप में बने रहे, बहुत ज़्यादा वो पिघले नहीं, और महासागर का जो जल स्तर है वो बना रहे। क्योंकि महासागर केवल पानी का विशाल भंडार नहीं है, वो हमारी धरती का दिल और फेफड़े हैं। तो आज के दिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस बात की कसम खाएं या एक शपथ लें कि हम महासागरों की रक्षा करेंगे, उनके मूल स्वरूप को बनाए रखने में अपना योगदान।
1: यानी कि कभी भी आप किसी भी तट पे जाएं तो वहाँ पर प्लास्टिक कचरा या किसी भी तरह प्रकार का कोई कचरा ना डालें, इससे क्या समुद्री जीवों पर भी खतरा बढ़ता है।

0: मीना, आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है और हर साल 8 जून को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है ब्रेन ट्यूमर की गंभीरता, उनके लक्षण और शुरुआती जांच के महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता फैलाना।
1: बिल्कुल, इसके जो प्रमुख तथ्य हैं वो है कि जब ये ब्रेन ट्यूमर बनता है तब मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं में वृद्धि होती है। ये घातक हो सकता है, यानी कि मैलिग्नेंट हो सकता है या बिगिनिन भी हो सकता है, और प्राथमिक उपचार से अगर ये प्राथमिक पहचान हो जाए, क्षमा कीजिएगा, प्राथमिक पहचान अगर इसकी जल्दी हो जाए तो ये उपचार से इसकी जो सफलता की संभावना है वो बढ़ जाती है। और इसके जो संभावित लक्षण होते हैं भगवती, उसमें एक ही अगर आपको लगातार गंभीर सिर दर्द होता रहे, बार बार उल्टी या मतली होती है, दृष्टि या सुनने में समस्या हो, सीजर्स यानी दौरे पड़ते हों अगर आपको, और याददाश्त या व्यवहार में बदलाव आए, या शरीर के किसी भाग में कमजोरी या सुन्नपन आए, तो ये इसके लक्षण होते हैं। और आज के दिन इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जागरूकता हो जाए एक तो, और समय पर निदान होने से बेहतर उपचार हो जाए और जीवन बचाया जा सके।
0: तो बिल्कुल, जो है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर हमें जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है, और अगर ये लक्षण कहीं दिखाई देते हैं तो ये MRI या CT स्कैन के माध्यम से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है।
1: बिल्कुल,

0: आज का युग तकनीक गति और निरंतर व्यस्तता का युग है और हम सुबह से रात तक अनेक जिम्मेदारियां और चुनौतियों का सामना करते हैं। काम का दबाव, पारिवारिक दायित्व, आर्थिक चिंताएं और भविष्य की अनिश्चितताएं हमारे मन को लगातार प्रभावित करती हैं। ऐसे में मानसिक शांति बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
1: बिल्कुल, और मानसिक शांति बनाए रखने के उपाय भी हैं। चुनौती भले ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें और समस्याओं की बजाय हल को ढूंढें, तो एक बहुत अच्छा साधन है मानसिक शांति लाने का, वो है ध्यान यानी मेडिटेशन। ये तनाव को कम करता है और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक अत्यंत सरल और प्रभावी तरीका है। मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है और हमारे मन के अंदर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।
0: बिल्कुल, ध्यान एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है जिनका उद्देश्य मन को एकाग्र करना और आंतरिक चेतना से जुड़ना है। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उन्हें समझते हुए मन को शांत और स्थिर बनाता है। नियमित ध्यान करने से सबसे पहला लाभ तनाव में कमी के रूप में दिखाई देता है, और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर और मस्तिष्क विश्राम की अवस्था में पहुंच जाता है। इससे तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोनों का स्तर कम होता है और मन में शांति का अनुभव होता है।
1: बिल्कुल, और अगर आपको ध्यान करना सीखना है तो कुछ टिप्स हैं। शांत स्थान चुनिएगा, घर या कार्यस्थल एक ऐसी जगह जहाँ पर शोर शराबा ना हो। आप पालथी मार कर बैठ सकते हैं, और अगर आपको पालथी नहीं मारी जाती तो आप सीधे कुर्सी पर शांति से बैठ सकते हैं। आंखें बंद करें, और सबसे अच्छा तरीका भगवती मैंने तो सीखा है, अगर ध्यान करना सीखना शुरू करना है तो सबसे पहले अपने जो सांस की जो इनहेल और एक्सेल है, यानी कि हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उस पर अपना फोकस बनाना। अगर आपने ये थोड़ी देर भी कर लिया तो आप बहुत कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख पाएंगे, अपने विचारों की गति को विराम देना सीख पाएंगे, आप किसी एक बिंदु पर फोकस करना सीख पाएंगे। और बहुत सारे जो विचार आते हैं अपने मन में, तो ध्यान के दौरान अगर अलग अलग विचार आ रहे हैं, ये स्वाभाविक है, ऐसे में विचलित नहीं होना बल्कि वापस से अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आए। और शुरू में बोलते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट तक करना चाहिए, और धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है।
0: उदयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे ध्यान केंद्र जो है वो संचालित होते हैं, जो आपको भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। शहर के प्रमुख ध्यान केंद्रों में पिरामिड ध्यान, राजयोग और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े कई जो है संस्थाएं भी शामिल है। साथ ही साथ आप जाएंगे तो मोती मगरी है, प्रताप नगर, हीरा नगरी है, या MLSU है, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप जाकर अपने आप को ध्यान की मुद्रा में रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, ध्यान सीख सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी कोई अर्थ तो लगता नहीं है, आपका कोई खर्चा नहीं लगता, और आप अपने लिए एक बहुत अच्छी वैल्यूबल चीज़ पा सकते हैं, जो कि आपको किसी भी काम में, आप अगर अपने जीवन के कोई लक्ष्य बना रहे हैं तो आपको किसी भी काम में अगर आपने फोकस करना सीख लिया तो वो सिर्फ और सिर्फ इस ध्यान से, मेडिटेशन से ही सीख सकते हैं, और वो सफलता ज़रूर दिलाता है।
0: और एक बात और भी कि ये आपको अनिद्रा से भी जो समस्याएं आती है, अनिद्रा वाली समस्या, उससे भी आपको निजात दिलाता है। तो बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त होने वाला है प्रादेशिक समाचारों का।
1: तो चलते हैं जयपुर स्टूडियोस कुछ ही पलों में, और हम मिलेंगे 9:10 पर लेकर नमस्कार उदयपुर का अगला हिस्सा।

0: अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सीटों पर जीत के आधार पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा समावेशी विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और सक्रिय नागरिक भागीदारी द्वारा निर्देशित होना चाहिए। युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री बिरला ने कहा कि शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 7 से 8 सालों में बढ़कर लगभग $45 अरब तक पहुंच सकती है। ये अर्थव्यवस्था वर्तमान में $9 अरब की है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में दृष्टिकोण को लेकर जो बदलाव आया है वह बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव छोटे शहरों से आने वाले सिविल परीक्षा के टॉपर्स की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है।
1: यावत् चतस्त्रः प्रदिशश्चक्षुर्यावत् समश्नुते तावत् समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्।
2: चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो जहां प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो।
0: भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सीमांत जिलों में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सरहदी जिले जैसलमेर की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध निर्माणों का सर्वे कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई थी।
3: गृह मंत्री महोदय ने, सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी उसमें पांचों जिले जो है सीमावर्ती जिले उनके कलेक्टर एसपीज के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का एंक्रोचमेंट है कि सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए, और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है तो उस पे कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले हमें

0: निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्लियर है कि एंक्रोचमेंट हटने की कार्रवाई करनी है और उससे पहले एक सर्वे का कहा गया है, तो सर्वे के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को हमने यहाँ से पाबंद कर दिया गया है कि सबसे पहले सर्वे है, सर्वे स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा और जैसे स्टेट से निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। देश विदेश के 566 शहरों में एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी। NTA की जानकारी के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए जयपुर पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क मोड पर है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ राजीव पचार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कमिश्नरेट क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, डंडा लेकर चलने पर रोक रहेगी। प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काऊ, भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण पर भी नजर बनाए हुए है। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थम जाने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से 11 जून तक तापमान में बढ़ोतरी होने और पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस बीच पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर सहित प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई। अजमेर में भी कई जगह पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई।
2: कल दिनभर की गर्मी और उमस के बाद देर रात करीब 2 बजे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं और तेज मूसलाधार बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर में कई जगह पेड़ और सोलर पैनलों की प्लेटें होर्डिंग्स उड़ गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि आज सूर्योदय के साथ ही उमस फिर बढ़ने लगी है। नीलिमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर में कल विशेष अभियान चलाकर करीब 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित उज्जैन, छोकरवाड़ा, वैर, बयाना और रूपवास में ये कार्रवाई की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना। पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार
3: श्रोताओं, नमस्कार। उदयपुर कार्यक्रम चल रहा है और मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकार।
4: मैं आपकी रेडियो साथी बीना और हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में। और भगवती, अब आगे बढ़ाएं थोड़ी सी गाड़ी अपनी।
3: बिल्कुल, एक गीत के साथ। और गीत से पहले एक बार फिर बताते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके बारे में

0: की राय ज़रूर से हमें लिख भेजिए। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो है
1: 9462697568, 9462697568, और हमें अगले 5 मिनट में आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा।

0: बसाया गया था, तो वो इस सिटी पैलेस से के आसपास के शहर के परकोटे के भीतर भीतर ही था। और सिटी पैलेस के आसपास ही जो यहाँ की प्रजा है उनकी सुख सुविधाओं के लिए अलग अलग क्राफ्ट्समैनशिप के लोगों को, अलग अलग शिल्पकारों को, अलग अलग बिजनेस के लोगों को यहाँ के राजा महाराजाओं ने बसाया, ताकि सारी जो सुविधाएं हैं वो शहर कोट के भीतर ही सभी लोगों को मिल सके।
1: राजपूत और वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ के भव्य चौक जो है वो आपको मंत्रमुग्ध करेंगे। और सिटी पैलेस के भीतर और उसके पैदल चलने योग्य आसपास के क्षेत्रों में कई सांस्कृतिक गतिविधियाँ आप देख सकते हैं। सिटी पैलेस संग्रहालय, जिसे 1969 में जनता के लिए खोला गया था, शाही कलाकृतियाँ, मेवाड़ की पेंटिंग्स और हथियार का एक विशाल संग्रह प्रस्तुत करता है। और जहाँ तक पेंटिंग्स की बात करें तो नाथद्वारा शैली और पिछवाई, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी।
0: हम अगर सांस्कृतिक गतिविधियों को दो हिस्सों में बांटे, एक तो वो कि जो पर्यटक यहाँ आकर आनंद ले सकते हैं, और दूसरा वो कि जो छोटी छोटी सी चीज़ें, जो आर्ट शिप्स, जो आर्टिजन्स हमारे यहाँ के बनाते हैं, जो क्राफ्ट्समैनशिप है हमारे यहाँ की, जो पारंपरिक लोक कलाएं हमारे बाज़ारों में बिकती हुई दिखती हैं, उन उन दो हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं। तो जो गतिविधियाँ कर सकते हैं यहाँ आकर, उसमें है लोक नृत्य देख सकते हैं और कठपुतली शो होते हैं। तो ये बागोर की हवेली जो है वो हमारे इसी एरिया में आती है, और यहाँ पर हर शाम को धरोहर लोक कला कार्यक्रम होता है, जिसमें घूमर, कालबेलिया, भवाई, तेरह ताल जैसे लोक नृत्य होते हैं, लोक संगीत होता है और कठपुतली प्रदर्शन भी होता है, जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचय देती है। और गणगौर घाट की सांस्कृतिक शाम हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर स्थानीय कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते दिख जाएंगे, और बहुत सुंदर जो रोशनी झील के अंदर गिरती है तो वो भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। पिछोला झील का नौका विहार है। और साथ ही अब हम आते हैं दूसरे चीज़ों पर, जो कि हमारी हस्तशिल्प और ग्रामीण संस्कृति। तो जो पुराना शहर है, इसके आसपास बहुत सारा बाजार बसा हुआ है, जहाँ पर हस्तशिल्प और पारंपरिक भोजन दोनों चीज़ें हमारे जो पर्यटक हैं वो पा सकते हैं। इनमें जो मुख्यतः जो बाज़ारों में मिलता है वो है बंदेज की चीज़ें, चांदी के आभूषण, ऊंट और के चमड़े से बने हुए बैग्स, फिर जूतियाँ और पारंपरिक वस्त्र। इसके अलावा
1: हाथीपोल का बाज़ार जो है वो नज़दीक स्थानीय हस्तशिल्प और राजस्थानी वस्त्र और पिछवाई पेंटिंग्स खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन जगह आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट की कई चीज़ें भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इधर पूर्व की दिशा में थोड़ा सा मुड़ते हैं तो वहाँ है लखारा चौक, और वहाँ पर आपको लाख की चूड़ियों के साथ ही लाख के कई तरह प्रकार के जो
0: आजकल ज्वेलरी भी
1: आर्टिकल
0: बनती
1: है ना,
0: है,
1: वो
0: वो आपको
1: आपको
0: मिल सकती
1: मिल
0: है।
1: सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा नीचे आए तो घंटाघर क्षेत्र जो है वो सिकली करो के लिए फेमस है, और यहाँ पर आपको लोहे के औजार साथ ही साथ लोहे की बहुत सारी चीज़ें जो है मिलेगी। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आए हैं तो फिर आपको मिलेगा बड़ा बाजार, जहाँ पर सोने चांदी की बहुत सी वस्तुएं, या यूँ
0: बिल्कुल।
1: कहें कि ज्वेलरी जो है वो
0: और
1: बनती
0: साथ
1: है।
0: ही हाँ भगवती, बड़ा बाजार का तुमने जिक्र किया है, तो बड़ा बाजार में ज्वेलरी तो मिलती ही है, उसके अलावा वहाँ पर जो राजपूती परिधान है, पोशाकें हैं वो मिलती है, और इसके अलावा जरी की अगर आपको काम करवाना है तो वो जरी, ये जरदोजी, वो सब आपको वहाँ मिलेगा बड़ा बाजार में।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पारंपरिक वस्त्र जो है जो मेवाड़ में पहने जाते हैं वो वहीं पे
0: वो
1: मिलेंगे।
0: वहीं पे
1: पूरे उदयपुर में
0: मिलेंगे
1: अगर आप घूमेंगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको वहां मिल जाएंगे।
0: बिल्कुल। और उसके थोड़ा आगे बढ़े तो वो मोचीवाड़ा कहलाता है, और वहाँ पर जो पारंपरिक हमारे यहाँ की जो जूतियाँ बनती है वो आपको वहाँ मिल जाएगी, है ना। और उसके और आगे बढ़ेंगे तो हम अगर जैसे जैसे हम दिल्ली गेट के नज़दीक आते हैं तो बीच में एक चोखला बाज़ार आता है और वहाँ पर आपको मिठाइयों को बनाने की चीज़ें मिलती है ना, जिसमें मावा वहाँ का फेमस है कि वहाँ मावे की बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएगी जहाँ पर दूध से बना हुआ मावा मिलता है।
1: गतिविधियों की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मावे का नाम लिया है और आप भड़भुजा घाटी को भूल जाए ये हो नहीं सकता। और वहाँ पर आप देखेंगे कि कई पुरानी दुकानें जो बरसों से पैतृक रूप से चली

0: कुछ ऐसी ही फिजाएं हैं हमारे उदयपुर की जो जादू भरी है, और उदयपुर का सिटी पैलेस खास तौर से सांस्कृतिक गतिविधियों का एक केंद्र है।
1: बिल्कुल, हमारा जो सिटी पैलेस है वो हमारे उदयपुर के बिल्कुल एक सेंटर में स्थित है। और कहते हैं कि उदयपुर जो था शुरू में जब

0: रही है और सिर्फ मावा बेचते हैं, है ना। और वहाँ के मावे में आपको एक अजीब मतलब एक विशेष प्रकार का
1: फ्रेशनेस होती है, बिल्कुल मिलेगा स्वाद आपको। होता है। उसके साथ ही साथ में बहुत सारे जो परचून है या आपका जो खाद्य सामग्री है राशन, उसके लिए पूरी की पूरी धान मंडी आपको वहाँ से जुड़ी हुई मिल जाएगी। और अगर हम उधर ना जाकर हम इस तरफ उतरते हैं घंटाघर से हाथीपोल की तरफ, तो यहाँ पर आपको जितनी चीज़ें मिल सकती हैं उनमें शामिल है बंदेज, लहरियाँ, साड़ियाँ मिल जाएंगी, चांदी के आभूषण मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ का जो एक स्पेशल पैचवर्क होता है, ऐसा कहा जाता है कि पुराने जो भारी भारी ड्रेसेस होती थी जब वो ख़राब हो जाती थी, तो उनके जो सुंदर सुंदर बेल बूटे हैं उनको काट के छोटे छोटे से बैग्स बनाए जाते हैं, और वो सामान हमारे उदयपुर में बहुतायत से मिलता है। और हमारे जो पर्यटक हैं वो उन चीज़ों को ले जाना पसंद करते, और उन पैचेस से बड़ी बड़ी दीवार पर बनाए लगाई जाने वाली सुंदर तस्वीरें बनाई जाती है, पूरे पूरे वॉल पीसेस बनाए जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उदयपुर में मिलते हैं। और स्पेशली अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप हमारे सिटी पैलेस और उसके आसपास के बाज़ारों को बहुत अच्छे से निरखिए, तलाशिए, और हाँ यहाँ बार्गेनिंग होती है वो आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो हम मंदिरों को कैसे भूल सकते हैं, है ना। आप जगदीश मंदिर अगर जाएंगे तो सिटी पैलेस के ठीक बाहर स्थित है, और 1651 का इंडो आर्यन मंदिर कला का उत्कृष्ट नमूना ये है, और आप यहाँ सुबह शाम आरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ उसी से जुड़ा हुआ है बांके बिहारी जी का मंदिर।
1: और अगर अपन गणगौर घाट जाते हैं और पाल पर जो घाट है उसके साथ साथ झील की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर और भी मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर घाट है हमारी पिछोला झील के। और अगर हम दूध तलाई के आगे बढ़े तो जलबुर्ज तक हमारे यहाँ बहुत सुंदर दृश्य है,
0: मंदिर भी है,
1: घाट के
0: है।
1: भीतर ही स्थित है, बिल्कुल। और देखा जाए तो जो पैलेस से दिखने वाली चीज़ें जो पहाड़ों पर स्थित हैं, उसमें नीमच माता नजर आती है, सज्जनगढ़ नजर आता है,
0: करणी माता नजर आती है,
1: तो जो सिटी पैलेस है उसकी छत पर खड़े होकर या उसको निहारते निहारते आप ऑलमोस्ट पूरे उदयपुर को निहार सकते हैं।
0: तभी तो यहाँ पर कई फिल्मों का फिल्मांकन हो चुका है, और इंग्लिश मीडियम है, लव आजकल है, प्रेम रतन धन पायो, गोलियों की रासलीला, और बहुत सारी फिल्में जो है
1: बनी है। और एक चीज और हम भूल रहे हैं, हमारे लकड़ी के खिलौने जो परंपरा आज तक भी जीवित है, छोटे छोटे सुंदर सुंदर ऐसे खिलौने जो बच्चों को बिल्कुल हार्म नहीं करते, और बहुत सारे लोग बरसों से ये लकड़ी के खिलौने उदयपुर से ले जाते आए हैं। फिर थोड़ा सा दूर गांव में जाएं तो मोलेला आर्ट्स, हमारी जो मिट्टी की कलाकृति है वो भी इस मेवाड़ की देन है। तो हम इतने समृद्ध हैं कि हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारे यहाँ किसी को काम नहीं है, बहुत काम है और बहुत नाम है हमारे शहर का।

0: बिल्कुल, हमें बहुत सारे संदेश मिले हैं और ये पहला संदेश मेरे पास है किरण कोमावत का। ये लिखते हैं, खम्मा गणी भगवती सर और बीना मैडम जी, नमस्कार। उदयपुर का प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है और उसको सुनते सुनते सुबह का सारा काम हो जाता है। इसमें आप जो भी जानकारी देते हो वह भी पसंद आती है और आज आपने जो ध्यान लगाने की जो जानकारी दी है बहुत अच्छी लगी, और बीच बीच में आप जो गाने भी सुनाए हैं वह भी अच्छे लगे हैं, और ओल्ड सिटी की जानकारी तो और भी अच्छी लगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी। और एक और हमारे जो नियमित श्रोता हैं कमल सुहाल का, ये लिखते हैं कि आकाशवाणी से हमारा गहरा नाता है, हम सभी आभार प्रकट करते हैं। सुबह सुबह का कार्यक्रम सूचनाओं से ओतप्रोत है, गर्मी का ध्यान रखें, नारियल पानी और नींबू के साथ शिकंजी का रसपान करें। और इनके साथ है विष्णु सुहाल का जी भी, और ये भी लिखते हैं कि विश्व महासागर दिवस पर्यावरण का जो बचाना है, जल भी बचाना है, और ये कहते हैं कि फतेह सागर को भी हमें साफ सुथरा रखना है, और इसके अलावा ये कहते हैं कि सभी महासागरों का भी हमें ध्यान रखना है। फिर इन्होंने लिखा है कि ब्रेन ट्यूमर में कोशिकाओं का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये कहना चाहते हैं, वैसे देखो अगर इनकी बात को ढंग से पढ़े हम, कि गुरु रामदेव जी बताते हैं योग गुरु कि भृतृका आसन करें, ये ऐसा कहते हैं। इनके साथ श्याम मठपाल भी हैं जो भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ ही हितेश और बालकृष्ण सुहाल का भी लिखते हैं कि मेडिटेशन और योग जीवन बचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है।
0: उदयलाल जी टेलर भी लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि आपने जो जानकारी दी है फिल्मों के बारे में वो बहुत अच्छी लगी है, और साथ ही साथ एक और मैसेज हमें मिला है वो है देवर्ष खत्री का, ये लिखते हैं कि ध्यान की जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप सबका तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने समय निकाला और मैसेज किए।
1: और अब अगर हम हमारे स्टूडियो की घड़ी की तरफ एक नज़र डालें तो थोड़ी देर में 9:30 हो जाएंगे, तो हम हमारे श्रोताओं को एक गीत की चंद पंक्तियों के साथ छोड़े जाते हैं और लेते हैं विदा नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम से आज के लिए। मैं थी आज आपकी रेडियो दोस्त वीना, और मेरे साथ
0: भगवती लक्षकार।
1: हम फिर मिलेंगे,
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार उदयपुर, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:30 लीजिए आप सुनिए NCERT उमंग ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
3: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
3: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
3: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
3: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
3: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा

0: डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
0: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे ही गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। नहीं, नहीं।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।

0: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
1: मंगला।
2: हाँ?
1: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
2: ठीक है।
1: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना।
2: हाँ हाँ।
1: उठाकर मुझे दे।
2: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
1: हाँ।
2: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
3: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
2: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।
2: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
2: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर उफ,
1: अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
2: ठीक है।
1: हाँ, अब बना।
0: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
2: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
2: ठीक है।
1: चल चल चल चल, चल।
2: हाँ,
1: हम
2: हाँ,
1: दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
2: हाँ, ठीक है, चल, ठीक
3: है। चल, चल, चल, चल, चल, चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य,

और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं।
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए।

0: विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
2: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
2: जी।
3: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
0: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
0: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
3: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: श्रोताओं, एनसीईआरटी उमंग ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए यादों के झरोखे से आज।

श्रोताओं, एनसीईआरटी उमंग ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए यादों के झरोखे से। आज इसमें दो फिल्में, पहली फिल्म हमने आपके लिए चुनी है नसीब।

जॉन जोनी जनार्दन तररम पम पम, ये गीत रजनीकांत, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर और धर्मेंद्र समेत उस दौर के कई बड़े सितारों ने केमियो किया था, जो आज भी एक यादगार दृश्य है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रेना रॉय और किम जैसे बड़े सितारों ने एक साथ काम किया था।

श्रोताओ, मनमोहन देसाई ने इसका निर्देशन किया था और इसकी कहानी लिखी थी कादर खान ने। बॉलीवुड इतिहास की एक मील का पत्थर ये फिल्म मानी जाती है और इस ब्लॉकबस्टर मसाला फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे।

0: बड़ा होके छोटे में रोक डालता है। हाँ नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो जा, मैं भी नहीं जाता। कट्टी बोल दिया ना, कट्टी।
1: फिल्म की शुरुआत एक लॉटरी टिकट से होती है जिसे एक शराबी ग्राहक होटल के वेटर नामदेव यानी कि प्राण को बेच देता है और नामदेव इसे अपने तीन दोस्तों कादर खान, अमजद खान और जगदीश राज को साथ साझा करता है। जब वह टिकट करोड़ों रुपए जीत जाता है तो लालच में आकर दोस्त ही नामदेव और जग्गी को धोखा दे देते हैं और सालों बाद उनके बच्चे जोनी यानी कि अमिताभ बच्चन, विक्की यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा, सनी यानी कि ऋषि कपूर और आशा हेमा मालिनी और जूली रीना रॉय अनजाने में एक दूसरे की जिंदगी और प्यार से जुड़ जाते हैं।

दोस्तों मनमोहन देसाई पहले इस फिल्म में अमर अकबर एंथोनी की टिकड़ी यानी कि अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना को लेना चाहते थे, लेकिन विनोद खन्ना के संन्यास लेने के कारण उनकी जगह शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया गया और फिल्म का क्लाइमैक्स मुंबई के चांदीवली स्टूडियो में बने कांच के घूमते हुए रेस्टोरेंट के सेट पर शूट किया गया। और उस दौर में ऐसा सेट बनाना किसी अजूबे से कम नहीं था। रेस्टोरेंट में लगी आग और अमिताभ बच्चन का विलेन को क्रेन से लटकाने वाला फाइट सीन आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्शन सीन में गिना जाता है। नसीब अपने दौर की उन चुनिंदा फिल्मों में से थी जिसने हर टेरिटरी यानी कि हर क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और महज 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तब तक 14.5 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी फिल्म थी जिसका ट्रेलर रिलीज से पहले दूरदर्शन पर दिखाया गया था।

नसीब के बाद अब 1981 में आई एक और फिल्म की बात करते हैं और वो है एक ही पुल। बॉलीवुड की बेहद भावुक और यादगार पारिवारिक ड्रामा फिल्म ये मानी जाती है और अपने दौर में दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप इसने छोड़ी थी। टी रामा राव निर्देशित इस फिल्म की यादें आज भी सिनेमा प्रेमियों के जहन में है। बात करें उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया।
7: क्या हुआ?
6: नया किडबैग चाहिए।
7: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
7: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
8: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

साथियों, फिल्म में जितेंद्र ने राम और रेखा ने साधना की भूमिका निभाई थी और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और उनके अभिनय की परिपक्वता को दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म में शबाना आजमी ने मीनाक्षी का किरदार निभाया था, जिसने कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। असरानी ने हमेशा की तरह अपनी बेहतरीन कॉमेडी से गंभीर होती फिल्म में मनोरंजन का तड़का लगाया।

कहानी राम और साधना के सुखी वैवाहिक जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो राम की एक गलती यानी कि बेवफाई की वजह से टूट जाता है और रेखा का अपने आत्मसम्मान के लिए पति को छोड़ना और अकेले बच्चे की परवरिश करना उस दौर के हिसाब से काफ़ी मजबूत कदम दिखाया गया था। तलाक के वर्षों बाद जब दोनों का

दोस्तों ये फिल्म तमिल निर्देशक भाग्यराज की सुपरहिट फिल्म आई थी मोना गीतंगल, उसकी आधिकारिक हिंदी रीमेक थी। और 1980 के दशक के सिनेमा के हिसाब से अगर इस फिल्म को देखें तो ये उस दशक में काफ़ी आगे थी, जिसमें दिखाया गया था कि एक महिला अपने आत्मसम्मान के लिए समझौते के बजाय अकेले जीना चुन सकती है। तो ये थी आज की फिल्म, फिल्म थी एक ही भूल। और अब यादों के झरोखे से दीजिए अनुमति आपके दोस्त भगवती लक्षकार को। नमस्कार।

यादों के झरोखों से ये कार्यक्रम अभी हमारे श्रोताओं ने सुना। श्रोताओं, आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 11 बजे हैं, हमारे श्रोताओं को आप सुनवाते हैं राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम गोखड़ा।

गोखड़ा कार्यक्रम हुणवा वाला सगड़ा श्रोतावां को कार्यक्रम में स्वागत करा और आप सब ने महको घणो मानसू राम राम सा। देखो सा अपने राजस्थान री विरासत घणी जोरदार है, तो क्यों नहीं कार्यक्रम में सबों पहला आपने हुणावां अपने राजस्थान राठौड़ा री आन बान शान रो बखान करतो तको यो गीत।

तो श्रोताओं, मोती खान री आवाज़ में अबारी आप राजस्थानी लोकगीत होने बढ़िया सो। तो अबे आपने बतावा कि गीता बेन रेबारी यो कसो गीत गावेगा, आओ होना सा।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
0: हाँ
4: आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

तो श्रोता या जानी मानी राजस्थान री आवाज ही सीमा मिश्रा री आकाशवाणी उदयपुर आप सुन रहे हो राजस्थानी गीता रो कार्यक्रम गोखड़ा। आओ अब आपने हुणावा मामे खान और ध्रुव री आवाज में गायो तो कोई आगलो लोक गीत।

तो देखा श्रोताओं, आपां अबार सीमा मिश्रा और साथिया री आवाज़ों में बहुत बढ़िया सोयो राजस्थानी लोकगीत हुणो। और अबे चलता चलता एक आखिरी लोकगीत और आपने हुणावा।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम गोखड़ा। आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। सवेरे के 11:30 हुए हैं। अब हमारे श्रोताओं के लिए हम लेकर आए हैं गैर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम गोक सुगम संगीत। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे सोनू निगम की एक एल्बम जान के कुछ गीत।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया।
7: क्या हुआ?
6: नया किडबैक चाहिए।
7: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
7: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
5: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

श्रोताओं, आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सोनू निगम की एल्बम जान के गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ओ प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूं, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मध्याह्न के ठीक 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं दोपहर फिल्म संगीत।

मस्त मगन, ये टू स्टेट फिल्म्स का गाना था और आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। धड़क फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ अजय गोगावले की है।

खूबसूरत आवाज़ें थी पैपों और रॉन्किनी गुप्ता की। फिल्म का नाम था सुई धागा। आइए फिल्म संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अरिजीत सिंह, शेखर और नंदिनी का गाया ये गाना। फिल्म है शंघाई।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है

0: आसान। ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

जी नहीं, अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। कुछ कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो ये आपको अंदेशा दिला देते हैं, या ऐसा कुछ आप उसे समझ जाते हैं कि शायद हो सकता है कार्यक्रम ख़त्म हो रहा हो और ये जाने की तैयारी में हो, इसलिए ऐसा गाना बजाया गया है। जी नहीं, ये हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना था, श्रेया घोषाल और फरहान सईद की इसमें आवाज़ें थी। अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, फिल्म का नाम मिशन मजनू।

श्रोताओं, ये था भेड़िया फिल्म का गाना, आवाजें अरिजीत सिंह के साथ सचिन जिगर की। आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल मिश्रा की आवाज में सावी फिल्म से ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये गाना हमने सुना लव आजकल टू। इस फिल्म से आवाज़ें प्रीतम अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं जन्नत टू। इस फिल्म से मोहित चौहान का गाया ये गाना।

श्रोताओं, ये जो गीत अभी हमने सुना उसमें आवाज़ें थी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आइए फिल्म संगीत के आखिरी गीत की ओर बढ़ें तो आपको बताएं कि ये है लैला मजनू। इस फिल्म का गीत आवाज़ श्रेया घोषाल की है।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज के दोपहर संगीत फिल्म संगीत का ये भाग यहीं समाप्त होता है। दिन में 1:45 पर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत के कुछ और नगमे। फिलहाल हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर अजमेर से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। बना रहिएगा हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों ने अपने नाम पत्र दाखिल कर दिए हैं। भाजपा के उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने आज अपने नामांकन प्रस्तुत किए। नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उधर कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नकली बीज प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी बीज निगम के निदेशक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। एसीबी ने बताया कि आरोपियों ने एक बीज कंपनी के जब्त बीजों को गुजरात भेजे जाने की एवज में कंपनी से 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूचना मिलने पर एसीबी की टीम ने आरोपी को बीकानेर के लूण करणसर से बस से उतार गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 85,00,000 रुपए की अवैध धनराशि बरामद की गई। एसीबी ने बीज निगम के निदेशक के घर छापा मारा, जहां से 1,50,000,000 रुपए की राशि भी जब्त की गई। प्रदेश भर में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए चलाए जा रहे अभियानों के तहत 5 मई से 6 जून तक 19,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान हैंडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज, कम दबाव के साथ पानी और अनिश्चित जलापूर्ति की शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा करीब 7,500 सुधारात्मक कार्यों के जरिए पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। इस दौरान 6 जून को एक दिन में 3,000 से अधिक कार्य संपन्न करवा के लोगों को राहत दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पेयजल व्यवस्थाओं को

सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष अभियान 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी जयपुर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज शहर के जगतपुरा और मालवीय नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। जेडीए दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और आरएसी का जाप्ता शामिल रहा। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर

0: में पुलिस बल और आरएसी का जाप्ता शामिल रहा। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। प्रदेश में हाल ही में आए आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए विद्युत तंत्र को सुचारू करने के लिए सभी विद्युत वितरण निगम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवर लाल डेलू ने बताया कि सरहदी और पश्चिमी जिलों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़, चांदन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद लक्ष्य में बढ़ोतरी किए जाने से किसानों को राहत मिली है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिलों में किसान सरकार के इस फैसले से उत्साहित है और मंडियों में गेहूं बेचान के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौकरिया ने बताया कि जिले का कुल गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़कर 8.75 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। हमारी महिला श्रोताएं अब सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: कितनी छोटी सी दुनिया है हमारी, एक हम है और एक दोस्ती आपकी। जी हाँ सखियों, आप बिना अधूरा सा लगता है जैसे बिना धड़कन के दिल। तो हमारे कार्यक्रम आपके बिना अधूरा है, तो स्वीकार कीजिए। नमस्कार नीलम जैन,
1: और देवबाला सोनी।
0: आपके और हमारे अपने कार्यक्रम महिला जगत में, क्योंकि आप हैं तो हमारा ये कार्यक्रम है और आप ही से हमारा ये कार्यक्रम गुलजार है।
1: बिल्कुल। और सखियों, जब हम बात कर रहे हैं, हमारे महिलाओं का कार्यक्रम है, तो महिलाओं की बात करें यदि नीलम, तो किसी भी राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा
0: बिल्कुल,
1: महत्वपूर्ण
0: क्योंकि
1: होती है।
0: जो ये महिला है ना, ये हमारे देश की आधी आबादी होती है।
1: बिल्कुल
0: अगर हम इन पे ध्यान देंगे तभी देश तरक्की की ओर अग्रसर होगा। और देखा जाए तो अभी भी कहीं कहीं पे मतलब महिला काफ़ी पीछे हैं,
1: बिल्कुल
0: चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, रोजगार के क्षेत्र में ले लो। और इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी।
1: तो योजना की बात करें हम हमारी सखियों से, तो सबसे पहली योजना है आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता।
0: और इसमें जो विशेष योजना चलाई जा रही है वह है लखपति दीदी योजना। ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। और धीरे धीरे, जैसे हम इसका नाम ही है लखपति दीदी, मतलब वो धीरे धीरे अपना खुद का अर्जन कर सके और एक लखपति बन सके और दूसरे ग्रामीण महिलाओं को भी वह ट्रेन कर सके। तो उनको ऐसा कोई कौशल प्रशिक्षण देना किसी पर्टिकुलर फील्ड में ताकि वो खुद अपना धन उपार्जन कर सके। इसी प्रकार है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें कम ब्याज दर पर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसमें तीन कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु जो इसकी जो कैटेगरी है उसमें 3 लाख तक का दिया जाता है, किशोर में 5 लाख तक का और तरुण में 8 से 10 लाख तक का।
1: और तीसरी योजना है उद्योगिनी योजना, और विशेषकर विधवाओं और विकलांग महिलाओं को व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर इसमें ऋण दिया जाता है।

0: जहाँ जैसे हम बात करते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, अगर सखियों अगर बेटियाँ पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। तो
1: बिल्कुल।
0: कुछ
1: तो
0: योजनाएं हमारे बालिका शिक्षा और कल्याण से भी संबंधित है।
1: और इसमें सबसे पहली योजना के बारे में हम बात करेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें छोटी बचत पर आकर्षक ब्याज दर दिया जाता है। तो मुझे तो लगता है नीलम कि जहाँ भी छोटी बच्चियाँ हैं जिन परिवारों में भी, तो इस योजना का लाभ उन्हें जरूर लेना
0: बिल्कुल सखियों,
1: चाहिए।
0: ये बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती है और 18 वर्ष तक ये चलता है। अगर आप न्यूनतम राशि भी इसमें जमा करेंगे और जब बच्ची आपकी 18 से 21 वर्ष के बीच में होगी तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें मतलब मिल जाता है भुगतान।
1: हाँ, मतलब ये
0: तो
1: योजना बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए भी काम आ सकती है, विवाह के लिए भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और बचत की आदत को प्रोत्साहित भी करती है।
0: बिल्कुल, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि बेटियों को बचाओ। जैसे हम खुद देख रहे हैं भ्रूण हत्याएं भी बहुत हो रही है, तो इसको रोकने के लिए भी ये नारा दिया गया है कि बेटी बचाओ और बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए बेटियों को पढ़ाओ भी। मतलब आगे बढ़ाना है तो बेटियों को पढ़ाओ भी सही।
1: तो इससे क्या होगा कि बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलता है। कि जहां हम पहले से सोचते थे कि लड़कियों को आगे नहीं पढ़ने देना है, बस 10वीं 12वीं पढ़ ली तो बहुत है, लेकिन अब इस जो स्लोगन दिया हुआ है तो अब लोग भी प्रोत्साहित होते हैं कि नहीं, बच्चियों को भी पूरा मौका देना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए
0: और
1: हमें।
0: बालिका समृद्धि योजना भी एक ऐसी योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये भी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, ये जैसे बालिका बड़ी होगी तो उसके लिए अच्छा एक अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। और सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित भी अनेक योजनाएं हैं। इसमें जो मुख्य है वह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये इसमें 5,000 तक की वित्तीय सहायता महिलाओं को दी जाती है।
1: और ये जो योजना है तो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। तो इसके अंतर्गत जो भी पात्र महिलाएं होती है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और ये इसलिए होता है नीलम कि बहुत सी बार जो गर्भवती लेडी है तो उसके पोषण की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो डिलीवरी के बाद भी जो पोषण की ज़रूरत होती है तो ये चीज़ उन्हें उसमें जो
0: बिल्कुल,
1: अमाउंट मिलता है उससे हेल्प
0: और
1: मिलती
0: सखियों
1: है।
0: इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने जो नज़दीक में जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं ना वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो उससे आपको जो ये 5,000 तक की वित्तीय सहायता है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी।
1: और ग्रामीण योजनाओं की और यदि तुम बात कर रही हो नीलम, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी महिलाओं के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रख के बनाई गई है। और इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। हम देखते ना कि पुराने समय में महिलाएं मतलब जो खाना बनाना है तो
0: चूल्हे पे
1: उसके लिए
0: बनाते
1: चूल्हे बनाती,
0: थे।
1: तो पहले लकड़ी बीनने जाना, फिर लेकर आना, इतना वजन उठा कर लाना और फिर धुएं में इतना रहना, तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी, समय बचाने के हिसाब से तो महिलाओं को काफ़ी राहत मिलती है ऐसी
0: बिल्कुल,
1: योजनाओं
0: और
1: से।
0: ये योजना मतलब सफल भी चल रही है, मतलब सफलता की तरफ भी चल रही है योजना। और फिर एक योजना और है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ये एक बचत योजना है और इसका शानदार ब्याज दर है, लगभग 7.5%। तो ऐसी मतलब ये जो सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी अनेक योजनाएं उपलब्ध हैं। और सुरक्षा और कानूनी सहायता, ये बहुत मुख्य है कि
1: बिल्कुल
0: महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को जो कानूनी सहायता है तो उससे संबंधित अनेक योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा चली जा रही है। उसमें है वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र, मतलब ये कि महिलाओं को पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता और कानूनी सलाह एक ही छत के नीचे दी जाती है।
1: और हम महिलाओं की भी बात करें तो एक ऑनलाइन मंच भी है, महिला ई हाट, जहां महिला उद्यमी अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार कर सकती है, बिक्री कर सकती है। और सखियों, यह महिलाओं को डिजिटल माध्यम से व्यापार करने का अवसर प्रदान करती है।
0: और
1: तो यह
0: इसके इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर एक महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, 181, यानी 181 टोल फ्री नंबर है। अगर आपको कहीं पे भी असुरक्षा महसूस हो रही हो, कहीं पे भी अगर आप दुविधा में हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकती हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही है, इसका मकान का मालिकाना हक महिला के नाम पर होना ज़रूरी है।
1: तो मतलब कुल मिला के बात यह कि इन योजनाओं का महत्व तो केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। ये योजनाएं महिलाओं में आत्मविश्वास को बढ़ाती है, उन्हें शिक्षा से जोड़ती है और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ती है और सामाजिक समानता को तो बढ़ावा देती ही है।
0: बिल्कुल, अगर मतलब अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो ये महिलाओं के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, मतलब जो हम कहते हैं ना सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही है ताकि महिलाएं भी आगे बढ़े। और अगर महिलाएं आगे बढ़ेगी तो देश तरक्की करेगा। और वैसे मेरे को अभी गांधी जी की दो लाइनें याद आ रही है, वो कहते हैं कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है ना तो स्वयं शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो परिवार होता है, समाज होता है और फिर राष्ट्र होता है।
1: बिल्कुल, कहता है ना, एक लड़की पढ़ गई सात पीढ़ी तर
0: तो
1: गई
0: बिल्कुल,
1: है।
0: इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और आज के परिवेश को देखते हुए उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि ये जो अभी योजनाओं के बारे में हमने आपसे विचार विमर्श किया है तो इस पर थोड़ा आप भी ध्यान दें और इन योजनाओं का लाभ
1: लाभ
0: उठाएं।
1: लें। और इसी के साथ सुने एक गीत।

सखियों, गीत के बाद चलते हैं हम हमारे प्रोग्राम में, और बात वापस वहीं आती है सखियों कि जब 21वीं सदी की हम बात करें तो ये ज़माना है तकनीकी और डिजिटल क्रांति का। तो आज के युग में किसी भी समाज या राष्ट्र का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आबादी तकनीक का उपयोग करने में कितनी सक्षम है। तो बात हम करेंगे नीलम आज डिजिटल सखी के बारे में कि विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी

0: सरकारी सहयोग से संचालित यह अभियान ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल दूत के रूप में तैयार करता है और डिजिटल सखी जो प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण समुदायों से ही ऐसी ऊर्जावान महिलाओं का चयन किया जाता है जो समाज में बदलाव लाने की इच्छा रखती हो और महिलाओं को डिजिटल साक्षरता दे सके। उन्हें टैबलेट, स्मार्टफोन और इंटरनेट उपकरणों से लैस किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का प्रचार कर सके।
1: बिल्कुल, और वैसे भी क्या है ना कि जमाना जो है वो मतलब ऑनलाइन ही है, आप देखें ना सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन ही है, तो अगर हम हमारी सखियों को अगर ट्रेंड नहीं करेंगे तो फिर जब भी हम कहते हैं महिला वर्ग पीछे रह जाएगा। तो जो डिजिटल सखी जो कार्यक्रम है, ग्रामीण भारत में महिलाओं के उत्थान, आर्थिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता की एक नई पहचान बनकर उभरी है। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल और वित्तीय ज्ञान का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए ये ज़रूरी सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित किया जाए ताकि वो इन चीज़ों का अच्छे से उपयोग कर सकें। डिजिटल मोड के माध्यम से धनराशि के लेन देन, ऑनलाइन पेमेंट, UPI, मोबाइल बैंकिंग की पूरी जानकारी उनको देना, व्यवसाय और आजीविका, सूक्ष्म उद्यम, बजट बनाना, बचत करना और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, जैसे हमने अभी शुरू में बहुत सारी योजनाएं बताई, तो अगर ये महिलाएं शिक्षित होगी और डिजिटल मतलब ये बारे में जानेगी तभी इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगी। क्योंकि इन योजनाओं में भी कितनी बार क्या होता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, अगर महिलाएं जागरूक नहीं होगी और नहीं जानेगी तो कैसे इन योजनाओं का लाभ उठा पाएगी।
0: और शिक्षा को बढ़ावा देती है डिजिटल जो सखी होती है, ये महिलाओं को बालिकाओं को ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों से जोड़ती है। वे इंटरनेट के माध्यम से नई नई जानकारी प्राप्त कर सकती है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम कर सकती है और अपने कौशल का विकास भी कर सकती है। और सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे बताई तुमने कि कितनी सारी जो जानकारियाँ होती है, विभिन्न कल्याणकारी योजना भी होती है, छात्रवृत्तियाँ भी होती है, स्वास्थ्य सेवाएं भी, तो सारी चीज़ों की जानकारी ये डिजिटल सखी के माध्यम से आप ले सकते हैं। और ग्रामीण विकास की यदि हम बात करें तो गाँव में डिजिटल सखी जो है कि बहुत ज़्यादा उपयोगी रह रही है योजना की। ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना यानी कि देश के समग्र विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब जब ग्रामीण महिलाएं ऑनलाइन बैंकिंग भी कर रही है, बिजली का बिल भरना है, आधार सेवाएं हैं, स्वास्थ्य परामर्श हैं, तो इससे क्या होता है ना कि नीलम समय और धन दोनों की बचत हो जाती है। तो इस तरह से ये योजनाएं महिलाओं को जरूर उपयोग में लेनी चाहिए।
1: देवबाला, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं ना कि डिजिटल मार्केटिंग है या जो भी है डिजिटल बैंकिंग या सारा, तो ये डिजिटल सखी कार्यक्रम के माध्यम से ये सारा ज्ञान तो हम हमारी सखियों को देते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साइबर सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि इतने ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, तो सखियों को इसके बारे में भी जागरूक किया जाता है कि कहीं भी आप अपनी जो पर्सनल जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी कहीं भी साझा नहीं करें, OTP शेयर नहीं करें, UPI पिन किसी को नहीं दें, और जो फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं उनके बारे में भी अलर्ट किया जाता है, और कितनी बार फ्रॉड स्कीम्स के माध्यम से भी मतलब जो कस्टमर्स होते हैं या ग्राहक होते हैं उनको ठगा जाता है, तो इन सब के बारे में मतलब इसी कार्यक्रम के तहत इसके बारे में भी जागरूक किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है, ब्रांडिंग और कंटेंट के बारे में बताया जाता है, और ये सारी जो जानकारी है ये उदाहरण के साथ इनको समझाई जाती है कि आप कैसे इन चीज़ों से बच भी सकते हैं। जरूर मतलब बहुत जागरूक होने का ज़माना है, और कहते हैं ना कोई अननोन ऐप है या कोई अननोन मेल है तो उसको आप कभी भी ओपन नहीं करें, तो इन सब से हम बच सकेंगे। और जो कह रहे हैं डिजिटल सखी कार्यक्रम है तभी ये कार्यक्रम सफल रहेगा।
0: बिल्कुल, तो और सखियों ऐसा है ना कि विज्ञान का कोई भी आविष्कार हो, हमेशा अभिशाप या वरदान दोनों ही चीज़ें साथ में
1: वो हमारे हाथ में
0: है, तो बिल्कुल कोशिश करें कि आप भी डिजिटल सखी बने, तो इससे ऐसा होगा ना कि कर भला हो भला, खुद भी अपना भी भला करें और सखियों को भी जानकारी।
1: बिल्कुल, अगर आप ट्रेंड हो गए तो आप अपने क्षेत्रों में जाकर भी अन्य महिलाओं को इसके लिए जागरूक करें और आगे बढ़ाएं।
0: बिल्कुल,
1: तो अब सुनते हैं गीत।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: कितना प्यारा गाना सुना, अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। तो इसमें मुझे ध्यान आ रहा है कि कभी अगर आपने समुद्रों की सैर की होगी तो अब नहीं लगता कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म।
5: बिल्कुल सही।
4: बिल्कुल है ना, क्योंकि हमें यही नहीं पता पड़ता कि समुद्र कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है।
5: हाँ।
4: और जो समंदर होते हैं मोती लुटा देते हैं, फिर भी दुनिया वाले उसे खारा कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि समुद्र का अगर पानी खारा है तो फिर भी वो हमें काफ़ी

0: कुछ देता है,
1: बहुत कुछ देता
0: इसीलिए
1: है
0: मतलब
1: कि
0: ये जरूरत है कि आज के समय में समंदर को बचाने के लिए भी हमें विश्व महासागर दिवस बनाना पड़ रहा
1: मनाना
0: है।
1: पड़ रहा है जो कि हम आज मना रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं ना कि प्रदूषण से प्रकृति की कोई भी चीज़ अछूती नहीं रह रही है, चाहे वो वन हो, जीव जंतु हो, या समंदर हो, महासागर हो। हम खुद देख रहे हैं कि कितनी जगह नहीं आता है कि महासागर का पानी धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, और जो समुद्री जीव जंतु हैं उनका जो जीवन है वह संकट में पड़ता जा रहा है।
1: मतलब काफी कुछ रिलेशन है कि हमारे मानव जीवन का, यदि हम देखो तो जलवायु से, जैव विविधता से महासागर का संबंध है, वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंध है कि हमारी अर्थव्यवस्था काफी कुछ डिपेंड करती है इस पर। तो इसलिए मना रहे हैं हम 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और इसके यदि इतिहास की हम बात करें तो विश्व महासागर दिवस की अवधारणा वर्ष 1992 में अर्थ समिट के दौरान प्रस्तुत की गई थी, और बाद में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2008 में आधिकारिक रूप से 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त की। और जभी से यह दिवस विश्व भर में विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों और जागरूक गतिविधियों के माध्यम से मनाया जाता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: और देवी बाला महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन आदि की ओर राजनीतिक और सामाजिक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया है। और ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जो जीवन को बनाए रखने में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है।
1: तो जहाँ तुम महत्व की बात कर रही हो ना, तो महासागर जो है पृथ्वी के जीवन चक्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पृथ्वी के लगभग आधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। और जीव जंतुओं की यदि हम बात करें तो लाखों जीव जंतु और वनस्पतियों का घर भी है ये महासागर। और जैसे कि हम जानते हैं मछली, झींगा, केकड़ा और अन्य समुद्री जीव करोड़ों लोगों के भोजन और रोजगार का स्रोत है। और व्यापार की भी यदि हम बात करें क्यों, तो विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। और पर्यटन उद्योग की भी बात करें तो समुद्र तटों और समुद्री जैव विविधता का इस पर निर्भर करता है। इस प्रकार महासागर पर्यावरणीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, और सखियों, जो वर्ष हमारा जो ये भी है, इस साल की थीम है, यानी कि 2026 की थीम है, नीति से व्यवहार तक समुद्री उत्कृष्टता को सशक्त बनाना। इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन से धरती के संरक्षण, प्राणी मात्र के जीवन की सुरक्षा, प्राकृतिक सौंदर्य के अतुलनीय स्रोत, अगणित व्यवसायों के आधार व अविश्वसनीय प्राकृतिक घटनाओं के कारक महासागरों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होना। कहते हैं ना कि जैसे हम कभी नहीं सोचते कि कितनी बार हम नहीं सुनते समुद्री तूफान आते हैं, वो आते हैं, तो ये सब कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो रहा है। और अगर देखा जाए तो जो हमको मानसून हमारा जो आता है तो वह भी समुद्र की ही देन है।
1: बिल्कुल। तो बहुत सारी जो चुनौती की यदि हम बात करें कि महासागर दिवस इसलिए मना रहे हैं कि कितने सारी चुनौतियां हैं ना हमारे सामने, कि जलवायु परिवर्तन यानी कि वैश्विक तापमान में यदि वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता है तो समुद्र का तापमान भी बढ़ता जाता है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है और बहुत सारे जीव नष्ट हो रहे हैं। मतलब कितनी बार हम न्यूज़ देखते हैं करते हैं कि कितने ही जीव जंतु हैं वो विलुप्त के कगार पर है। अब जब मछलियाँ पकड़ने की बात आती है तो अंधाधुंध मछली पकड़ने से कई समुद्री जातियाँ यहाँ भी नष्ट हो रही है। तो इससे जो खाद्य श्रृंखला का संतुलन बिगड़ जाता है, जो कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ जाता है। और तेल और रासायनिक प्रदूषण की यदि हम बात करें इससे, तो जहाज़ों और उद्योग से निकलने वाला जो तेल होता है और रासायनिक पदार्थ होते हैं वो समुद्र में मिलके और जल को दूषित करते हैं, और इससे समुद्री जीवों और वनस्पतियों को भारी नुकसान होता है। और कितने ही जो जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो भी खत्म हो रही है क्योंकि जो समुद्र का पानी है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है।
0: बिल्कुल, और सखियो, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले परितंत्रों में महासागर की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए समुद्री पर्यावरण की स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। इसे प्रदूषित होने से बचाएं तथा एक सभ्य नागरिक बने।
1: और यदि तुम नीला हम बात कर रहे हैं कि महासागर के सामने क्या चुनौती है, तो महासागर की सबसे बड़ी चुनौती की बात है प्लास्टिक प्रदूषण। तो बात और भी बहुत ज़्यादा करेंगे
0: बिल्कुल
1: प्लास्टिक प्रदूषण के बात करेंगे, और इसी के साथ सुनेंगे एक गीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी?
2: हाँ।
1: नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: देव भला, जैसे हमने बात की थी विश्व महासागर दिवस की, तो अभी मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक अध्ययन के माध्यम से ये बात सामने आई है कि सन 2050 तक समुद्र में मछलियों के वजन जितना प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्लास्टिक हमारे लिए कितना घातक है।
6: बिल्कुल, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें।
5: बिल्कुल, तो सखियों, अगर आप सोच रहे हैं कि प्लास्टिक के बिना जीवन जीना संभव है, जी हाँ, पूर्णतः अगर संभव

0: नहीं है, तो कुछ प्रयास तो हम कर सकते हैं।
1: और वापस हमारी पुरानी दुनिया की तरफ जाना पड़ेगा
0: बिल्कुल
1: कि जहाँ हमारा जब हम बहुत छोटे थे तब इतना ज्यादा प्लास्टिक का यूज
0: कहाँ
1: कहाँ
0: होता
1: होता
0: था। और
1: था।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कैसे शुरू किया जाए या कम से कम इसकी शुरुआत कैसे की जाए, तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, तो पुराने जमाने की तरफ चलें और अपने घर रखें कपड़े का बैग या फिर जूट का थैला।
0: बिल्कुल
1: जब हम पुराने जब सब्जी लेने जाते थे, कुछ भी सामान लेने के लिए जाते थे, तो पॉलीथीन बैग से बचें। और ये मतलब कम एक दो अच्छे डिज़ाइन के, आराम से बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन के मिल रहे हैं आजकल, तो जो ले वो बना सकते हैं। और जो हम बोतलें पुराने ज़माने में स्टील का जग या फिर ये जो तांबे का यूज़ करते थे, हमारे जग वगैरह यूज़ करते थे, तो बॉटल यूज़ करते थे, वापस उसकी तरफ जाना चाहिए
0: बिल्कुल
1: हमें। और रीयूज़ करने वाले सामान मतलब हम यूज़ करें और प्लास्टिक बर्तनों से बचें। कि तुम्हें ध्यान है कि जब हम छोटे थे ना तो पत्तल दोने चलते थे, तो वो जो पत्तल दोने होते थे ना, तो
0: वो
1: वो
0: मतलब
1: सिर्फ
0: ये कि
1: जो
0: प्रकृति को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं
1: नुकसान नहीं,
0: पहुंचाते
1: वो
0: थे,
1: हाँ वही तो यूज़ होने के बाद भी उससे खाद बन जाती थी। और आजकल के जो पत्तल दोने आ रहे हैं ना, उसमें प्लास्टिक शीट
0: प्लास्टिक
1: होती है।
0: वाला आ रहा है।
1: तो
0: सही
1: यदि
0: है,
1: यूज़ करना भी है तो आप ओरिजिनल वाले करें, और पैकेजिंग पर भी ध्यान दें कि जहाँ कम से कम प्लास्टिक उपयोग हो वैसे कोशिश करें।
0: इसके लिए कि आप बोतल बंद पानी पीना छोड़ दें, क्योंकि बाज़ार में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे पानी की वैरायटीज़ उपलब्ध हैं, और बाहर घूमते समय आप अपने खुद के कॉफ़ी मग या साथ लेकर जाएं, ताकि वो यूज़ एंड थ्रो वाले आपको यूज़ नहीं करने पड़े।
1: बिल्कुल
0: अपने साथ पुनः उपयोग करने लायक बर्तन और कांच के पीने की स्ट्रॉ रखें। और ऐसे मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे साधन हैं, अगर अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे हमारे घर में स्टील के बर्तन यूज़ करें, लकड़ी के यूज़ करें, प्लास्टिक को जितना हो सकता है आप अवॉइड करें।
1: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जागरूकता फैलाएं
0: और
1: कि हम यदि
0: क्योंकि
1: कुछ अच्छी पुरानी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कि हम यदि प्रकृति का यदि ध्यान रख रहे हैं, तो हमारे फ्रेंड्स को भी बोलें, हमारे परिवार में भी इसकी जानकारी दें, और बच्चों को भी प्रेरित करें। कि जैसे बच्चे बहुत से बार वो ऐसा सोचते हैं कि चटकीले कलर के जो टिफिन होते हैं प्लास्टिक के, तो नहीं, वो बिल्कुल गलत है। कि कोशिश करें कि स्टील या फिर ऐसी धातु का यूज़ करें जो पर्यावरण के
0: और
1: अनुकूल हो।
0: वैसे भी जो है ना, साइंटिस्ट लोग भी बोले हैं कि जो प्लास्टिक के टिफिन होते हैं ना, इनमें अगर हम खाना पैक करते हैं तो उसके केमिकल के साथ मिलकर ये खाना हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो हो सके तो आप स्टील के टिफिन यूज़ करें, ये बच्चों के लिए भी अच्छे रहेंगे। तो ऐसे बहुत मतलब जहाँ तक हो सके हम अपने स्तर पर भी प्लास्टिक को कम कर सकते हैं।
1: तो जानकारियां तो हो गई, और समय है वापस गीत सुनने का।

0: और चलते चलते सखियों बात करते हैं हम बिरसा मुंडा के बारे में, जिनकी कल है पुण्यतिथि। तो बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं जिन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
1: और देवबाला बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1975 को झारखंड में हुआ था। ये मुंडा जनजाति से थे और जनजातीय अधिकारों के लिए लड़े। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान आंदोलन चलाया। बिरसा ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। वे भगवान बिरसा के नाम से पूजे जाते थे। उन्होंने आदिवासी संस्कृति और धर्म की रक्षा की। बिरसा मुंडा ने शिक्षा और स्वच्छता पर भी जोर दिया। उनका निधन 9 जून यानी कल ही के दिन 1900 को जेल में हुआ। आज भी उन्हें आदिवासी समाज का नायक माना जाता है, भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो बहुत कम उम्र यानी कि 25 वर्ष की उम्र में ही वो एक तरीके से देखा जाए तो शहीद हो गए थे।
0: तो बिल्कुल, हम बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं तो हम सभी का भी कर्तव्य है कि हम बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लें और उनके बताए मार्ग पर चलें।
1: तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज का जो हमारा कार्यक्रम है यही समाप्त होता है। तो स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

महिला जगत कार्यक्रम अभी हमारे श्रोताओं ने सुना। आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1:45 हुए हैं। आइए श्रोताओं, एक बार फिर से आपको लिए चलें गीत संगीत की दुनिया में।

0: मैं 16 बरस की। इस फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे श्रोताओं, आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आवाज़ें थी उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की। फिल्म का नाम था धड़कन। कहो ना प्यार है, ये है अगली फिल्म का नाम, जिसका गीत अब आप सुनने जा रहे हैं। आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं।

तो श्रोताओं, अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 2:10 हुए हैं। प्रस्तुत है विकास चर्चा। विकास चर्चा में आज का विषय है कृषि यंत्रीकरण मिशन। सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40-50% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य खेती को आधुनिक, कम लागत वाली और अधिक उत्पादक बनाना है। कृषि विभाग के अनुसार रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जीरो टिल सीड ड्रिप, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ रिपर, पावर वीडर, लेजर लैंड लेवलर सहित कई यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। किसान इससे समय की बचत और श्रम की कमी की समस्या दूर कर सकेंगे। आवेदन राज किसान साथी पोर्टल ई मित्र केंद्र से किया जा सकता है।

कृषि यंत्रीकरण योजना की मुख्य विशेषताओं और लाभों की बात की जाए तो सामान्य किसानों को 40% तक और महिला लघु सीमांत यानी SC/ST किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। कस्टम हायरिंग सेंटर यानी CHC, किसान समूहों, FPOs, किसान उत्पादक संगठनों या उद्यमियों को कृषि मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80% तक 8 से 12 लाख रुपए तक का अनुदान मिलता है। अनुदानित यंत्र इसमें थ्रेशर, कल्टीवेटर, पावर टिलर, सुपर सीडर, कंपाइन हार्वेस्टर और कृषि ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरण शामिल हैं।

सरकार की इस मदद से आधुनिक यंत्रों की बुवाई, निराई गुड़ाई, कटाई मड़ाई और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे कार्य कम समय में और अधिक दक्षता के साथ किए जा सकते हैं। इससे न केवल किसानों का समय बचता है बल्कि फसलों के कार्य समय पर पूरे होने से बेहतर उत्पादन भी प्राप्त होता है। इससे किसान आसानी से उन्नत तरीके से खेती कर सकेंगे। इसमें किसानों को अधिक खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि योजना में आवेदन के लिए आपको किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, तो आधार कार्ड या जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी ट्रांसफ़र के लिए भूमि के दस्तावेज जैसे जमाबंदी, खसरा, खतौनी की नकल या और इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी किसानों के लिए। आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आपको दे दें, आप अपने राज्य के

कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जैसे राजस्थान में राज किसान साथी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी ई मित्र या जन सुविधा केंद्र या कृषि कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। कृषि यंत्रीकरण मिशन, इस योजना पर आज हमने आपको विकास चर्चा में जानकारी दी और अब आज की विकास चर्चा यहीं पूरी होती है।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र,
4: गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
5: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
6: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
7: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते

0: देखते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सकें।

0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
1: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
3: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
1: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
5: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान

0: उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत।
2: राम राम ममता भाई सा, राम राम।
3: राम राम नानू भाई, राम राम।
2: कृषि जगत कार्यक्रम हुणवावला हगलाई किसान भाई बहना ने आपनो
3: राम राम सा।
2: देखो सा कार्यक्रम रो टेम भयो और बात बात री जानकारी आपा किसान भाई बहना बाते लेन आया हां सा। और देखो यदि किसान री बात री अगर आपा कार्यक्रम में बात करा तो आज किसान भाई बहना बाते देखो आपा बात लाया हां कि फसल सिंचाई और जल संरक्षण कई प्रकार महत्वपूर्ण है सा।
3: बिल्कुल सा। देखो नानू भाई, फसल सिंचाई और जल संरक्षण आधुनिक खेती बाड़ी रा दो सब महत्वपूर्ण स्तंभ है सा। भारत जैसा कृषि प्रधान देश में जटे मानसून अनिश्चित वेवे है, वटे पानी रो सही प्रबंधन करनो केवल अपनी फसला है बनारी अच्छी पैदावार रे वाते, बल्कि अपने भविष्य रे वाते जल संसाधन ने बचानो भी बेहद जरूरी है सा।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आप जाना कि मानसून जो है वो अनिश्चित है, कंडान टाइम पे आवे और कंडान टाइम पे नहीं आवे। वही टाइम पे अगर अपने पानी री सुविधा उपलब्ध नहीं हुए तो अपने फसल री जो सिंचाई है वह देखो बाधित हुए। तो कई प्रकार की जो फसल री सिंचाई री आधुनिक और कुशल विधियां है, जन में अगर आप देखो पारंपरिक सिंचाई री अगर बात करा तो पहले री टाइम पे कई खेत ने पानी में आप भरने रख देता जिस तरह की कोई बाढ़ आई वो। लेकिन अब बार देखो आप देखा कि वही टाइम पानी री बहुत अधिक बर्बादी भी थी, लेकिन अंडी जगह पे अगर आप आधुनिक तकनीक और अगर उपयोग करा तो वे आज री अपनी फसल में देखो लाभ तो दे और पानी री बचत भी करे है सा।
3: बिल्कुल सादे को नानू भाई, अना विधिया में अगर आप बतावा तो देखो एक वे टपकन विधि, एक वे छिड़काव विधि, दूसरी एक वे भूमिगत सिंचाई। देखो टपकन सिंचाई की बात करा तो अने विधि में कई वे पानी रो जो पाइप है वने नोजल रे जरिए सीधो पौधा री जड़ा तक बूंद बूंद करीने पहुंचायो जावे। अणियो फायदो यो वे वे कि पानी रो जो वाष्पीकरण है वो न्यूनतम वे और लगभग 30-50% तक पानी री बचत वे। अणियो कई वे कि फल और सब्जियां रे वाते यो सर्वोत्तम रे वे हैसा।
2: और जटे देखो छिड़काव विधि रे अगर आप बात करा तो अणमे पानी ने कृत्रिम बारिश री तरह फसला पे छिड़क्यो जावे। यो रेतीली और आसमान भूमि जीतर की ऊंचा नीचा खेत है वन में काफी लाभदायक है, क्योंकि अणु पानी जो है वो पूरा खेत में समान रूप फैले है।
3: देखो भूमिगत सिंचाई की बात करें नानू भाई तो अणी में पानी की जो पाइपलाइन वे वन जमीन रे नीचे दबाई दी दी जावे, जणियो पानी सीधो जड़ा तक मिलतो रहे और वन उपली जो मिट्टी है वह सूखी रहे हैसा।
2: बिल्कुल सा। जटे देखो आप फसल सिंचाई की बात कर रहे हैं तो अणमें जो सरकारी योजना है वे भी काफ़ी हद तक लाभान्वित कर रहे हैं। जण में देखो आप बात करा तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, यह योजना देखो किसान भाई बहना ने जो है हर खेत तक सिंचाई री सुविधा पहुँचाणो और पानी रे सही और कुशल उपयोग ने बढ़ावा देवा री बात करें, क्योंकि आपा सब जाना कि हर खेत में पानी री जरूरत है और देश में कृषि योग्य क्षेत्र जतरा भी है उनमें सिंचाई जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है।
3: बिल्कुल सा। आणी में देखो प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करनो यो भी अनो एक लक्ष्य है। पानी री बर्बादी ने कम करनो और आधुनिक जो तकनीका है वन्य जरिए कम पानी में ज्यादा पैदावार ने सुनिश्चित करनो है सा।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्षेत्र स्तर पर सिंचाई रा बुनियादी जो ढांचा है वन में निवेश रे बातें देखो आकर्षित की दो जावे और अण में 80 जमीन ने सिंचाई रे दायरा में लावारी बात की दी जावे, जण में पानी री कमी रे कारण सूखो पड़वारी संभावना वे।
3: लारे लारे जल उपयोग दक्षता री बात करा तो पारंपरिक जो तरीका है वणी में जगह आपा देखा आधुनिक सिंचाई तकनीका ने बढ़ावो देनो ताकि पानी री बर्बादी नी वे। जल संरक्षण री बात करा तो वर्षा रो जल है

0: संचयन और भूजल रो जो पुनर्भरण है वन्ने बढ़ावो देनो भी है सा।
1: और जटे देखो आणी योजना रे लक्ष्य रे और घटक रे अगर आप बात करें तो किसान भाई बहन जो है वहाँ ने मध्यम सिंचाई परियोजना में तेजियों पूरी भई सके और हर खेत ने पानी मिलेगा। अंडी बात कीजिए और जन में जो आपकी है ड्रिप सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर सिंचाई विधि है यह बहुत लाभदायक व्यवस्था।
0: बिल्कुल सा अणि मैं आप आधुनिक तकनीकारी बात करा तो अने अपना वाते सरकार सब्सिडी भी देवे जणियों पानी सीधो पौधा हूँ जड़ा तक पहुँचे और अणि में 40-50% तक पानी की बचत रहे। लारे लारे वाटर शेड विकास की बात करा तो अने तहत वर्षा आधारित जो क्षेत्र है वणि में मिट्टी की नमी ने रोकणो पानी ने रोकणो और मेड़बंदी छोटा बांध बनावा जैसा काम करनो है सा।
1: अणि में देखो आप कार्यक्रम में आगे और भी बातचीत करांगा लेकिन कार्यक्रम में बातचीत रे लारे देखो मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। को तो किसान भाई बहना ने हुनावा एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत।
0: हाँ सर।

0: तो देखो ममता भाई सही होते होने प्यारों से राजस्थानी लोकगीत और रण में भी देखो जल संरक्षण री बात की दी गई। और आपा जब बात कर रहे हैं कि फसल सिंचाई रे लार लारे जल संरक्षण क्रम नहीं प्रकार कर सका, तो देखो जल संरक्षण रे जट बात करा तो खेती बाड़ी में आपा छोटा छोटा उपाय अपने ने अगर देखा तो खेत रो पानी बचाओ में कई वेगा कि मिट्टी रो जो नमी है वह काफ़ी लंबा समय तक बनी रहेगा और वनडे कारण अपनी खेती बाड़ी बहुत अच्छी बह सके। अणमें जट उपाय री बात करा तो सबसे पहला उपाय कही है सा
1: बिल्कुल सा तो नानू भाई यानी मैं सबू पहली उपाय यहाँ पर देखा तो मल्चिंग या पचे पलवार पौधा रे जो आसपास री जो मिट्टी है या सूखी घास है पत्ता है या पचे प्लास्टिक सीट है ना उन्होंने ढाकी दियो जावे। और यानी मैं लाभ री बात करना तो या कही कि सूरज री जो सीधी धूप है वही मिट्टी पड़वा मैंने रोके है जड़ी मिट्टी री जो नमी है हवा में नहीं उड़े और बार बार सिंचाई जरूरत यानी में नहीं पड़े है सा।
0: बिल्कुल सा। और जटे देखो आप खेती बाड़ी में देखो रसायन रो प्रयोग करा तो वन में भी देखो पानी ज़्यादा छावे, लेकिन अन्य जगह पर अगर आप जैविक खाद रो अगर उपयोग करे किसान भाई जड़ में कि गोबर खाद भी केंचुआ खाद भी या हरी खाद भी अंडो अगर अधिको अधिक उपयोग करे तो जैविक तत्वों कई वेगा कि मिट्टी जो है वह जल धारण क्षमता बहुत अधिक वेगा, जड़ों की मिट्टी लंबा टाइम तक जो आपने है वह गीली रहे और सूखी नहीं वारे कारण वन में सिंचाई री कम जरूरत पड़े है।
1: और लारे लारे फसल चक्र और सही फसला रो चयन करना भी बहुत जरूरी किसान भाई ने क्योंकि अणी में कही वे कि कम पानी वाली जो फसला है जैसे बाजरा है ज्वार है दलहन है तिलन है अणा ने बढ़ावो देनो चावे सा। लगातार असी जो फसला है वे नहीं लगानी जणियों कही वे कि नरी अधिक पानी की जरूरत वे जैसे कि धान वेग्यो गन्ना वेग्यो अणा में पानी की नरी आवश्यकता पड़े है सा।
0: बिल्कुल सा। और जटे देखो आजकल अगर कृषि में यंत्रीकरण रे अगर आप बात करा तो वन में देखो आप एक तकनीक आवे लेजर लैंड लेवलिंग। अण में कही वेगा कि लेजर तकनीक को खेत जो है वो पूरी तरह समतल और सपाट की दो जावे, जणू कही वे कि खेत अगर समतल वही जाए तो पानी जो है वो पूरा खेत में एक समान फैलेगा और एक जगह पर देखो भरियो लगो नहीं रहेगा, तो वणु भी कही वेगा कि आपने जो पानी है वनडो संरक्षण वेगा सा।
1: और नानू भाई यहाँ पर चाहवा तो घरेलू स्तर पे भी पानी की बचत कर सका। देखो ब्रश करता टाइम है या पचे आप बर्तन धोता टाइम है नल ने खुल्लो नहीं छोड़नो है लारे लारे बाल्टी भरी ने आप नवा अगर नहावा तो भी पानी कम इस्तेमाल वेवे है। अणी में शावर उपयोग भी कम करनो है लारे लारे आरो फिल्टर वो निकालवा वालो जो वेस्ट पानी वे है वने फेंकवारी बजाय आप पोछा में ले सका बर्तन धोवा में ले सका और पौधा में डालवारे वाते भी इस्तेमाल कर सका सा।
0: बिल्कुल सा। और जटे देखो कृषि में बदलाव रही अगर आप बात करें तो फसलों में देखो सिंचाई रे बातें देखो आप बात की दी कि पारंपरिक तरीक़े रे बजाय अगर टपकन सिंचाई विधि भी या पचे छिड़काव विधि भी या भूमिगत पाइपलाइन विधि भी अगर अणि तकनीक रो उपयोग करने भी किसान भाई अगर सिंचाई करे तो वणु भी देखो काफ़ी लाभ वे वैसा।
1: तो देखो नानू भाई अपना किसान भाई है अपने घरेलू महिला है सब मिली ने आपा चाहवा तो अणी वर्षा जल रो संरक्षण भी कर सका जल ने बचाई सका। और देखो जल है तो कल है सा।
0: बिल्कुल सा। अंडे बातें देखो अब आप देख रहे होगा कि बरसात आवारे पूर्व मानसून पहला जतरा भी नदी नाला है वनारे देखो साफ सफाई रो अभियान भी चाले हो, क्योंकि सा कि आप सब जाना कि अगर वन में गंदगी रहेगा तो वो प्रकारों जो पानी है वो जल्दी बह न आएगा और नदी नाला रे माध्यम देखो अपने सागर या तालाब रे माध्यम आगे री तरफ जाए तो वन में देखो अशुद्धि आ जाएगा। तो वन डे भी अगर साफ सफाई रखा और जो आपके वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की छत्रो पानी जो है एक पाइप रे सारे अगर आप जमीन में उतार दें तो वणु कही कि अपना जो भूमिगत जल स्तर है वो भी कही वे ऊंचो बढ़े सा।
1: बिल्कुल सा तो नानू भाई अपने वर्षा जल ने भी

0: जानो है, सिंचाई में भी आपने छोटी छोटी ये विधियां आपने सिंचाई करनी है, जल रो संरक्षण भी करना है। और अभी आपके वो तो देखो कार्यक्रम में जानकारी तो आप अघणी कर ही रहा, किसान भाई ने प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत सुनावा सा।
1: बिल्कुल सर।

0: तो देखो ममता भाई, सही हो तो उन्होंने प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत। और देखो आपा कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा बात करा, तो आज है देखो 8 जून, और 8 जून ने देखो आज विश्व महासागर दिवस रे रूप में भी मनाया जावे। और जटे देखो आपा बात करें जल संरक्षण रे, तो विश्व महासागर दिवस और जल संरक्षण पे देखो आपको तो किसान भाई बहन ने जानकारी दा सा।
1: बिल्कुल सा। देखो नानू भाई, विश्व महासागर दिवस और जल संरक्षण दो एक ही सिक्का रा दो पहलू है। क्योंकि देखो जटे महासागर वेगा तो आपा देखा जल रो संरक्षण वत्रो इस आवश्यक वे जावे। पृथ्वी पे जीवन अगर बचायो राखणो है तो आपने जो महासागर है वणा ने स्वस्थ राखणो जरूरी है, और पीवा योग्य मीठो पानी ने बचाणो भी बेहद जरूरी है। क्योंकि आज आपा देखी रहा कि प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक रे रू आपा आतरो इस्तेमाल करी रहा, हाँ वो प्लास्टिक सब बना पानी में जाई रो, सागर में जाई रो, प्रदूषण बढ़ी रो, अणियो कही वे रो कि जल प्रदूषण बढ़ी रो। तो आपने देखो पानी रो संरक्षण करनो बहुत जरूरी है सा।
0: और आज रे दिन देखो पूरी दुनिया में विश्व महासागर दिवस मनायो जावे। महासागर की जटे बात करा तो अपनी धरती जो है वनडे फेफड़ा महासागर ने कहो गयो। यो दिवस अपने याद दिलावे कि समुद्र जो है अपने जीवन में कतरो महत्वपूर्ण अंग है सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो ऑक्सीजन रा मुख्य स्रोत री बात करा तो आपनी जो धरती है लगभग 50% तक अधिक ऑक्सीजन आपने महासागर में रहवा वाला जो समुद्री पौधा है वणी द्वारा वणी जावे। तो आपने महासागर ने सुरक्षित राखणो आपनो सबरो दायित्व वे गयो ऐसा।
0: बिल्कुल सा। और जटे देखो जलवायु नियंत्रण रे अगर आप बात करा तो महासागर पृथ्वी रे तापमान ने नियंत्रित रखे, वे सूरज री गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड ने सोख ने ग्लोबल वार्मिंग जो है वनडे असर ने भी कम करे है।
1: और भोजन और आजीविका की बात करें तो दुनिया भर में देखो करोड़ों लोग जो है वनारो रोजगार वनारो देखो रोजगार है मछली पालन। और पर्यटन की बात करें तो समुद्र पे आपनों रोजगार और पर्यटन भी निर्भर करें। आप कसई भी देश में जावा कसई भी शहर में जावा तो आपने विशेष तौर अपन देखा वटारी जो झीला वे वटारा महासागर वे आपने पर्यटन ने बढ़ावा देवे हैसा।
0: बिल्कुल सा। और जटे देखो महासागर और मीठा पानी रे अगर आप बात करा तो अणा में देखो आप जाना कि नदियाँ और तालाब रो पानी अलग अलग और समुद्र रो अलग, लेकिन प्रकृति में सब कुछ एक जल चक्र में जुड़ियो लगो है। जटे देखो आप वाष्पीकरण री बात करा तो समुद्र रो खारो पानी जो है वो सूरज री गर्मियों में भाप बनने ऊपर उठे, और वाष्पीकरण री अणि प्रक्रिया में नमक नीचे रही जावे और शुद्ध पानी जो है वो हवा में चलियो जावे है।
1: बिल्कुल सा। और यही भाप आगे चली ने बादल बने हैं, पहाड़ मैदान और खेता में मीठा पानी जैसे बारिश वेगी बर्फ वेगी अनारे रूप में या बरसे है सा।
0: बिल्कुल सा। और यो बारिश रो पानी नदियाँ रे जरिए वापस समुद्र में मिल जावे, यानी कि अपने गांव शहर और नदियाँ ने अगर आप प्रदूषित करांगा तो ये सारो कचरो और केमिकल अंततः नदियाँ रे माध्यम महासागर में जाएगा। अंडे बात है आस पास रे पानी ने बचाणो और साफ राखणो सीधे तौर पर महासागर ने बचाणो जसो है।
1: बिल्कुल सा। और आप देखो नानू भाई प्लास्टिक प्रदूषण की भी जब बात करी रहा तो हर साल आप देखा लाखों टन जो प्लास्टिक रो कचरो है वो समुद्र में फेंकी दीदो जावे, और जानियो कई वे समुद्री जे जीव है वनारो दम घुटवा लागे और वे मरवा लागी जासा।
0: और जटे देखो ग्लोबल वार्मिंग रे काम बात कर रहे हैं तो तापमान बढ़वा रे कारण समुद्र रो जल स्तर भी बढ़ रहे है, और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जिस तरह की कोरल रीफ मूंगा चट्टाना जो है ये भी नष्ट हो रहा है।
1: तो देखो आपने सबने यो संकल्प लेनो चाहे नानो भाई कि जल है तो कल्स है और अगर महासागर है तो जीवन है सा।
0: तो आज विश्व महासागर दिवस पर आपा सब ये संकल्प ला और जल जीवन जो है अन्य बचावारी मुहिम में जोड़ा सा। और देखो कार्यक्रम में चाला और को तो चालता चालता एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और होना सा।
1: बिल्कुल सा।

0: तो देखो ममता भाई, सही हो तो उन्हें प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत। और देखो कार्यक्रम में किधी बातचीत और जानकारी दी थी। और अबे देखो घड़ी आड़ी देखा तो आप कार्यक्रम में चलवा रहो, अपना टाइम वेरो तो चला सा राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा। कृषि जगत, ये कार्यक्रम अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे। आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। दिन के 3 बजने को हैं आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, जनधन, मुद्रा और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने

इस सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने एक प्रेस नोट में तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाल के चुनाव में मतदाताओं ने राज्य में 15 वर्ष से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रति स्पष्ट रूप से अविश्वास व्यक्त किया है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं, इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है।

0: अविश्वास व्यक्त किया है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसने कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसराइल के वायु सेना केंद्रों नेवोतिम और तेल नोफ पर हमले किए गए। मीडिया की खबरों के अनुसार इसराइल के हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 3:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये दोपहर कालीन सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 सायंकालीन सभा के प्रसारण लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की

0: अल्फाजों का सफर है, जज्बातों का समंदर है। आज की शाम हर युवाओं के नाम है। कुछ मन की बातें होंगी, कुछ ख्वाब के उड़ान होंगे। ये युवाणी है दोस्तों, यहाँ हर बात की एक नई पहचान होगी। हेलो, गुड इवनिंग खम्मागणी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आज आपकी होस्ट माहीन खान, और आज मेरे साथ है मेरे को होस्ट
1: हर्षित।
0: तो चलिए आप हम कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले सुनेंगे काव्य पाठ ज्योति सुथार द्वारा।
2: नमस्ते, मेरा नाम ज्योति सुथार है। मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी पहली कविता है 90 वर्षों की गूंज आकाशवाणी। प्रेम भरी भरी वाणी से रिश्ता बड़ा प्यारा रहता है। यहाँ आवाज की खनक से दिल हल्का महसूस होता है। यह यात्रा जो चल रही 90 वर्षों से है, उसी का प्यारा नाम आकाशवाणी है। स्वतंत्रता की गूंज हो या सैनिकों की दास्ता हो, खेती के समाचार हो या मौसम की मार हो, कई इलाकों में बसता मंजर सुनाया है। आकाशवाणी ने सब पर खूब प्यार लुटाया है। सबकी भाषा संस्कृति को अपना बनाया है। गीत कहानी कविता से मनोरंजन बढ़ाया है। जब चल रहे थे आंदोलन, लड़ाई, युद्ध, जब हो रहा था सब और अंधेरा, तब आकाशवाणी ने आवाज़ बनकर सबके मन को सुकून दिया। भेदभाव किए बिना सबके मन को सहारा दिया। आकाशवाणी की आवाज़ सच्चाई और भरोसे की गूंज बनी, जिससे तम को मिटाकर प्रेम की भाषा चुनी। सीमा पार सैनिकों की खबर हो या अनजान रास्तों से आता कोई डर हो, आकाशवाणी ने सबको पहचान लिया। बिना चेहरे की चमक के सबको सुकून दिया। देश की धड़कन आमजन की आवाज़ बनी, आकाशवाणी देश की पहचान बनी। आकाशवाणी के पास दूर दूर की खबरों का बसेरा था। शिक्षा संचार में भी इसका नाम पहला था। दुख या सुख की घड़ी में समाचार सबसे पहला माध्यम था। आकाशवाणी कोई आवाज़ नहीं, घर का एक सुकून वाला हिस्सा हुआ। आकाशवाणी मनोरंजन और अपनापन की छवि बना। पीढ़ियों से आती सुंदर आवाज़ बना। कोरी कल्पना का सुंदर भविष्य है। आकाशवाणी हमारी पीढ़ियों की यात्रा का सहभागी है। पीढ़ियाँ बदलती गई, समय बदलता गया, पर आकाशवाणी की आवाज़ अमर है। बरसों से गूंजती यह वाणी भारत का कर रही सुंदर वर्णन है। मेरी अगली रचना है हवा में गुली कहानियाँ। रेडियो की कहानी बरसों पुरानी है। आवाज़ की खनक बड़ी प्यारी है। गीत संगीत भजनों का मेल रहता है। रेडियो की आवाज़ से हर घर भरा रहता है। रेडियो सुनाता रहा भारत देश के समाचार, कहानी कविता मधुर संगीत। सुनाए कुछ ऐसे किस्से जिससे दिल भर आया, जैसे कोई बिना चेहरे के घर में मुस्कान ले आया। रेडियो की तरंगों में जैसे प्यार बसते देखा, इसी के कारण पूरे परिवार को एक साथ बैठे देखा। रेडियो बरसों से गूंजती कोई कहानी है। रेडियो का मीठा धीमा संगीत जब गूंजता था, हर किसी का मन मोह लेता था। रेडियो आवाज़ नहीं, मन की बहती कोई कहानी है, जो पल भर में सुकून दे जाए ऐसी वाणी है। शब्दों का जादू रेडियो पर खूब चलता है। किसी की हिम्मत तो किसी की कहानी बनता है। तकनीक बदली, नया दौर आया, रेडियो का अंदाज बदला और कई जगह नया मुकाम बनाया। नया दौर आएगा, नई तकनीक आएगी, आवाज़ में अपनापन लिए रेडियो नया मुकाम बनाएगा। मेरी अगली कविता है माइक से मुल्क तक। आवाज़ जिन्होंने लंबा सफ़र तय किया, हर गांव हर गली तक ये सफ़र चला, देश की खबरों को जन जन तक पहुंचाया। रेडियो ने मुल्क का साथ रोज़ निभाया। आसमान में जब मौसम बदला, किसानों तक ये सबसे पहले पहुंचा। त्योहारों की खुशियां सब और छाई रही, रेडियो ने फिर भी अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई। युद्ध आंदोलन नियम

कानून सबको अपनी भाषा में समझाया, युद्ध आंदोलन नियम कानून सबको अपनी भाषा में समझाया, रेडियो ने परिवार के सदस्य जैसा हिस्सा निभाया, देश को एक कड़ी में जोड़ता रेडियो जन जन की आवाज बना, देश को एक कड़ी में जोड़ता रेडियो जन जन की आवाज बना, आवाज गूंज के कानों में मीठा रस घोलती रही, आकाशवाणी धीरे धीरे सजती संवरती गई, आकाशवाणी धीरे धीरे सजती संवरती गई। मेरी अगली कविता है अनसुनी आवाज़।

0: बन दिखाया जिन्होंने बच्चों को शिक्षित कर खुद को संबल बनाया। दूर दराज काम पर गए अपने सुहाग को हिम्मत देकर खूब प्यार लुटाया। जीवन उनका जैसे झोंक दिया परिवार समाज घर की चार दीवारी को, फिर भी ना चाहा कोई पद प्रतिष्ठा। जैसे किरदार में खूब भिन्नताएं रही, उनके किरदार में खूब भिन्नताएं रही। माँ बहन पत्नी बनकर जीवन भर जिम्मेदारियां निभाती रही। संघर्ष को उनके सलाम करते हैं, हिम्मत बनकर हम आज उनकी उनके सपने को पूरे करते हैं। प्रेम लुटाकर हम उन पर उन्हें प्यार से अभिनंदन करते हैं। मेरी अगली कविता है अगर सपने बोल पाते तो युवा अपने कौशल में सफल हो पाते। अगर सपने बोल पाते तो युवा अपने कौशल में सफल हो पाते। तकनीकी शिक्षा का हाथ थामकर युवा नया भविष्य बना पाते। वो हारते ही नहीं किसी एक राह पर चलकर थाम लेते अपने सपनों को दौड़कर। मैंने देखा है अपने सपने में महारत हासिल किए इंसान को, हर रोज कुछ नया कर पाने के जुनून को, हर ओर नई राह खोज पाने के आत्मविश्वास को। अगर बोल पाते सपने तो युवा लिखते इतिहास की नई भाषा को, उम्मीदों की नई आशा को। वो पा लेते अपने सपनों के मुकाम को, कर पाते अपने आवश्यकताओं को पूरा, चल लेते उस राह जो उन्हें सफल कर पाए। अगर सपने बोल पाते तो युवाओं के सपने से बनता नया भारत, जो 21वीं सदी में कहलाता युवाओं के सपनों से बना, उनके सपनों से पूरा हुआ भारत। अगर सपने बोल पाते तो युवाओं से बनता नया भारत और उनके सपनों से पूरा हुआ नया सुंदर भारत। मेरी अगली रचना है आकाशवाणी का प्यार, मेरी कहानी। मैंने कहानियाँ लिखी, कविताएँ लिखी, कोरे कागज पर सपनों की लकीर खींची। आकाशवाणी ने एक मौका दिया जैसे सब पूरे सपने को नया रूप दिया। कागज के पन्ने पर लिखी रचनाओं को आकाशवाणी ने मंच दिया। उम्मीद ही नहीं थी कि आवाज़ रेडियो पर आ पाएगी, लेकिन यहाँ के परिवेश ने विश्वास किया। सफलता में परिवेश ने खूब साथ दिया। क्या कोई कमी नहीं होगी मुझ में? कमी को स्वीकार कर यहाँ पर सुधार किया। मेरी आवाज़ मेरी पहचान बनी। आकाशवाणी ने मुझ में नई उम्मीद भरी। उत्साह भरा यहाँ के परिवार ने। मैं सदैव ऋणी रहूँगी। मेरी आवाज़ को मंच तक पहुँचाने में आकाशवाणी ने सहर्ष साथ दिया। मेरी अगली पोयम है चिड़िया। मैं तेरे आंगन की चिड़िया, लगा के पंख उड़ जाऊंगी। मैं सात समंदर पार की सैर कर बाबा तेरे आंगन में फिर आऊंगी। मैं उड़ना चाहती हूँ इस दुनिया में, हर ओर चहकना चाहती हूँ। हर ओर मंजिल पाकर मैं तेरे आंगन की शोभा बढ़ाऊंगी। मैं पिंजरे की जंजीरों को तोड़कर आसमान छू जाऊंगी, ऊंचे आकाश में उड़कर सफलता का परचम लहराऊंगी। गिरकर भी हताश नहीं होना है, फिर उठना है, मेहनत के हाथ को थाम कर फिर नया इतिहास रचना है। आपके सिखाए गुर मैंने सारे रट लिए हैं। जीवन में ना डरने के मैंने प्रशिक्षण लिए हैं। कोई डर मुझे अगर सताएगा, बाबा मैं फिर आपके पास आऊंगी। बाबा मैं तेरे आंगन की चिड़िया, लौट के फिर तेरे आंगन आऊंगी। धन्यवाद।
1: यह था कवियत्री ज्योति सुथार द्वारा प्रस्तुत काव्य पाठ। आशा है उनकी रचना ने आपके मन को अवश्य स्पर्श किया होगा।
2: क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पैसा वह मुद्रा है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे रुपया, डॉलर। ठीक ऐसी ही एक डिजिटल करेंसी के बारे में अब बात करेंगे जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो यानी हिडन, छुपी हुई, और करेंसी यानी मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी, जिसे कभी कभी क्रिप्टो भी कहा जाता है, मुद्रा का कोई एक ऐसा रूप है जो डिजिटल या आभासी रूप में मौजूद होता है और लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है।
3: क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो लेन देन के सत्यापन के लिए बैंकों पर निर्भर नहीं करती है। यह एक पीयर टू पीयर सिस्टम है जो किसी को भी कहीं से भी भुगतान भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
2: जी बिल्कुल, यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यह लेन देन को सत्यापित करने के लिए यानी एन्क्रिप्शन का उपयोग करती है।
3: इसका मतलब है कि वॉलेट और सार्वजनिक बही खाते के बीच क्रिप्टोकरेंसी डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने में कोडिंग शामिल है।
2: हम बात करते हैं सबसे पहली क्रिप्टोकरेंसी की, जो बिटकॉइन थी, जिसकी स्थापना 2009 में हुई और ये

0: आज की सबसे फेमस है। क्रिप्टो करेंसी में लोगों की दिलचस्पी मुख्य रूप से मुनाफा कमाने के लिए व्यापार करने में होती है।
1: बिटकॉइन, इथेरियम और डॉजी कॉइन जैसी कुछ प्रसिद्ध क्रिप्टो कॉइन हैं। इसके फायदे यह हैं कि यह तेज, सुरक्षित और पारदर्शी होते हैं, लेकिन इसकी कीमत में तेजी से उतार चढ़ाव भी होता है।
0: और 2015 में विकसित हुआ एथेरियम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी है, जिसे एथर ETH या एथेरियम कहा जाता है। बिटकॉइन के बाद ये सबसे यूज्ड CC है।
1: अब हम बात करेंगे रिपल CC की। रिपल एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। रिपल का उपयोग क्रिप्टो करेंसी के अलावा विभिन्न प्रकार के लेन देन और उनको ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।

0: तो दोस्तों अब ले चलते हैं आपको इतिहास की दुनिया में। आज हम आपको लेकर चलेंगे आर्मेनिया की पहाड़ियों में बसे दो ऐसे अद्भुत मठों की यात्रा पर जिन्होंने सदियों से ज्ञान, संस्कृति और आस्था की ज्योति को जीवित रखा है।
1: ये हागपत और सनाहिन के मठ, ऐसे मठ जो केवल पत्थरों से बने इमारतें नहीं बल्कि एक पूरे युग की कहानी अपने भीतर समेटे हुए हैं।
0: कल्पना कीजिए लगभग 1000 वर्ष पहले का समय, ऊंचे पहाड़, शांत वातावरण और उनके बीच ज्ञान की खोज में लगे विद्वान।
1: यही दृश्य हमें इन मठों की ओर आकर्षित करता है। आज भी इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समय यहीं कहीं ठहर गया हो।
0: हागपत और सनाहिन दोनों मठ आर्मेनिया के लौरी क्षेत्र में स्थित है और मध्यकालीन आर्मेनियन वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं।
1: इनका निर्माण मुख्य रूप से 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ, जब आर्मेनिया में कला धर्म का स्वर्णित काल चल रहा था।
0: इन दोनों मठों को वर्ष 1996 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
1: क्योंकि ये केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखते बल्कि मानव सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।
0: आइए सबसे पहले बात करते हैं सनाहिन मठ की। सनाहिन का नाम जो है वो अर्थ जो है यह उससे भी पुराना है।
1: यह नाम अपने आप में रोचक है और इसके पीछे कई स्थानीय कथाएं भी प्रचलित है।
0: सनाहिन मठ को शिक्षा और विद्वता के केंद्र माना जाता था। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे।
1: उस समय जब आधुनिक विश्वविद्यालयों की कल्पना भी नहीं थी, तब ऐसे मठ ज्ञान के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे।
0: यहाँ धर्मशास्त्र, दर्शन, गणित, इतिहास और साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता था।
1: इतना ही नहीं, यहाँ कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां भी तैयार और संरक्षित की गई।
0: सनाहिन में मौजूद पुस्तकालय उस समय के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्रों में गिना जाता था।
1: और यही कारण है कि इस मठ को मध्यकालीन आर्मेनिया का एक प्रमुख शैक्षिक संस्था माना जाता है।
0: अब रुक करते हैं हागपत मठ की ओर, जो अपनी भव्य वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।
1: हागपत का निर्माण लगभग वर्ष 975 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसे आर्मेनिया की महारानी ने संरक्ष विकसित किया गया।
0: मठ का मुख्य जो चर्च है या सेंट निशान अपनी विशाल संरचना और सुंदर नकाशी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।
1: जब सूर्य की किरणें इसकी पत्थर की दीवारों पर पड़ती है तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है।
0: हागपत केवल पूजा का स्थान नहीं था, यहाँ भी शिक्षा, लेखन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी
1: और कई विद्वान यहाँ रहकर अध्ययन और शोध कार्य करते थे।
0: दोनों मठों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी वास्तुकला है
1: और मजबूत पत्थरों से निर्मित ये संरचनाएं सदियों के भूकंप, मौसम और समय की परीक्षा में खड़ी रही हैं।
0: इनकी इमारतों में गुंबद, मेहराबों और पत्थरों पर की गई बारीक नकाशी देखने योग्य है
1: और हर पत्थर मानो अपने समय की कोई कहानी सुनाता हो।
0: आर्मेनिया की एक विशेष कला है खाचकार, यानी पत्थरों पर उकरे गए अंकलुत क्रॉस।
1: हागपत और सनाहिन में भी अनेक सुंदर खाजदार देखने को मिलते हैं जो आर्मेनिया की संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान है।
0: इन पर बनी आकृतियां केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उस समय की कलात्मक सोच की भी परिचय देती है
1: और यही कारण है कि कला और इतिहास के शोधकर्ता इनका गहन अध्ययन करते हैं।
0: तो दोस्तों हमें इन्हें संरक्षित करना है तभी उसकी पहचान सदियों तक जीवित रहती है।
1: और इन मठों की कहानी केवल आर्मेनिया की कहानी ही बल्कि मानव सभ्यता की साझा विरासत की कहानी है।
0: एक ऐसी विरासत जो हमें अतीत से जोड़ते हुए भविष्य के लिए प्रेरणा देती है।
1: तो दोस्तों अगर आपको इतिहास, वास्तुकला, संस्कृति में रुचि है तो हागपत और सनाहिन के मठ निश्चित रूप से आपकी यात्रा सूची में होनी चाहिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो भारत के किसानों और युवाओं के भविष्य से सीधा जुड़ा है, नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास।
4: बिल्कुल, आज कृषि केवल खेती तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह नवाचार, तकनीक और व्यवसाय के नए अवसरों का क्षेत्र बन चुकी है।
3: जब हम नवाचार यानी इनोवेशन की बात करते हैं तो इसका अर्थ है नई सोच और नए तरीकों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना।
4: और जब यही नवाचार कृषि क्षेत्र में अपनाया जाता है तो उत्पादन बढ़ता है, लागत घटती है और किसानों की आय में सुधार होता है।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है, आज भी देश की बड़ी आबादी कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है।
4: लेकिन बदलते समय के साथ खेती को भी आधुनिक बनाना आवश्यक हो गया है।
3: आज ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, मिट्टी परीक्षण और मोबाइल ऐप जैसी तकनीकों का उपयोग खेती में किया जा रहा है।
4: और इन तकनीकों से किसानों को मौसम, बाजार, फसल प्रबंधन की जानकारी समय समय पर भी मिल जाती है।
3: अब हम बात करते हैं कृषि उद्यमिता यानी एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की।
4: और सरल शब्दों में कहें तो कृषि से जुड़े उत्पादों और सेवाओं को व्यवसाय के रूप में विकसित करना ही कृषि उद्यमिता कहलाता है।
3: आज कई युवा पारंपरिक नौकरी के बजाय कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं।
4: कोई जैविक खेती कर रहा है तो कोई प्रसंस्करण और कृषि विपणन के क्षेत्र में एक नए अवसर तलाश कर रहा है।
3: मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन और हाइड्रोपोनिक्स जैसे क्षेत्र भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
4: इन क्षेत्रों में कम निवेश के साथ अच्छा रोजगार और आय प्राप्त की जा सकती है।
3: कृषि उद्यमिता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रोजगार मांगने वालों को रोजगार देने वाला बना सकती है।
4: यानी युवा स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं।
3: सरकार भी कृषि नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं।
4: और आज ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण किसान अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक भी पहुंचा सकते हैं और इससे बिलोचियों पर निर्भर करता है होती है कि किसान को कैसे बेहतर मूल्य मिला हो।
3: विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र में तकनीक की भूमिका और अधिक बढ़ेगी।
4: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसे तकनीक कृषि को एक नई दिशा देंगी।
3: ऐसे में युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अपना योगदान दें।
4: क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब कृषि और युवा दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे।
3: नवाचार ही दोस्तों नई संभावनाओं को द्वार खोलता है।
4: और चलिए अब हम बात करेंगे वियतनाम वॉर की।

उत्तरी वियतनाम की जीत हुई और पूरा वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बन गया। यह एक युद्ध नहीं था, बल्कि इसने राजनीति, समाज और एक इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत ही गहरा प्रभाव डाला।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जरा इमेजिन कीजिए, इंटरनेट तो है लेकिन कोई वेबसाइट नहीं है, ना ऑनलाइन क्लासेस, ना सोशल मीडिया और ना ही एक क्लिक पर इंफॉर्मेशन।
4: आज की डिजिटल दुनिया की पिक्चर बिल्कुल अलग होती है और इसी दुनिया को बदलने वाले व्यक्ति थे टिम बर्नर्स-ली।
3: इनोवेशन की दुनिया में उनका योगदान बहुत खास माना जाता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को लोगों के लिए और अधिक उपयोगी बनाया
4: क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया। आज हम जिस वेब का इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत उन्हीं की देन से है।
3: टिम बर्नर्स-ली का जन्म 8 जून 1955 को लंदन में हुआ था। उनका बचपन से ही उनकी कुछ रुचि जो है कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में थी
4: और 1989 में वो CERN नाम के रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे। वहाँ साइंटिस्ट को इन्फॉर्मेशन शेयर करने में काफ़ी दिक्कत होती थी।
3: इसी समस्या का समाधान ढूंढते हुए टिम के दिमाग में WWW का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि जानकारी को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जा सकता है
4: और WWW ने दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। ये अपने समय का एक रिवॉल्यूशनरी इनोवेशन था
3: और इसी के साथ हाइपरलिंक का कंसेप्ट भी आया जिसकी मदद से हम एक पेज से दूसरे पेज तक पहुंच सकते हैं
4: और आज हम सिर्फ एक क्लिक में हजारों वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। ये सुविधा टिम बर्नर्स-ली के विजन के परिणाम है।
3: टिम ने पहला वेब ब्राउजर और पहला वेब सर्वर भी डेवलप किया, यानी उन्होंने सिर्फ आइडिया ही नहीं दिया बल्कि उसे हकीकत में बनाया
4: और 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और उसके बाद वेब का विकास बहुत तेजी से होने लगा।
3: HTML, HTTP और URL जैसे कॉन्सेप्ट्स को पॉपुलर बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हर वेबसाइट इन्हीं टेक्नोलॉजीज पर आधारित है
4: और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अपने इन्वेंशन को फ्री रखा और इसी वजह से वेब पूरी दुनिया तक पहुंच सका।
3: आज ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स और डिजिटल बैंकिंग सब इसी इनोवेशन की देन है। वेब ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है
4: और टिम बर्नर्स-ली ने हमें सिखाया है कि एक अच्छा आइडिया दुनिया बदल सकता है और इनोवेशन तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसका लाभ सबको मिले।
3: जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं या ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं
4: और तब हम उस इनोवेटर के सपने का हिस्सा बनते हैं जिसके दुनिया को डिजिटली कनेक्ट कर दिया गया।
3: दोस्तों अब चलते हैं फिल्मी दुनिया की ओर। कभी कभी फिल्मी दुनिया में कुछ सितारे ऐसे आते हैं जो अपनी पहली ही फिल्म में दर्शकों के दिल पर अमीट छाप छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री है डिम्पल कपाड़िया।
4: अपने शानदार अभिनय, आत्मविश्वास और अलग पहचान के कारण डिम्पल कपाड़िया भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।
3: डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को मुंबई में हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था
4: और साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और इस फिल्म ने उनके अभिनय को दर्शकों और दोनों को खूब सहारा दिया।
3: दिलचस्प बात यह रही कि पहली फिल्म की अपार सफलता के बाद उन्होंने फिल्मों से कुछ समय का विराम ले लिया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता राजेश खन्ना से विवाह किया
4: और कई वर्षों के बाद जब उन्होंने फिल्मों में वापसी की तो एक बार फिर अपने प्रतिभा से सबको प्रभावित किया और उनकी दूसरी पारी भी उतनी ही सफल रही जितनी पहली थी।
3: डिम्पल कपाड़िया ने केवल ग्लैमरस भूमिका ही नहीं निभाई, उन्होंने गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदारों को भी बड़े प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा।
4: सागर, रुदाली और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के विशेष सराहे हुए और विशेष रूप से रुदाली के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।
3: डिम्पल कपाड़िया की पहचान एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में है जिन्होंने हर दौर में खुद को साबित किया। उन्होंने बदलते समय के साथ अपने अभिनय को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया
4: और हाल के वर्षों में भी कई महत्वपूर्ण फिल्मों और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में दिखाई दी हैं और उनका अभिनय आज भी दर्शकों को उतना ही प्रभावित करता है।
3: उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि प्रतिभा और आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। सफलता केवल शुरुआत में नहीं बल्कि लगातार सीखते और आगे

0: बढ़ते रहने में है।
1: भारतीय सिनेमा में डिंपल कपाड़िया का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। वे आने वाली पीढ़ियों की कलाकारों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनी रहेंगी।

0: जब मंच पर लोक गीतों की गूंज हो रही है, ग्रामीण जीवन की खुशबू हो और समाज की सच्चाइयाँ अभिनय के माध्यम से सामने आए, तो एक नाम स्वतः याद आता है, हबीब तनवीर।
1: भारतीय रंगमंच को नई दिशा देने वाले हबीब तनवर ने परंपरा और आधुनिकता के बीच

0: एक अद्भुत सेतु का निर्माण किया।
1: 1 सितंबर 1923 को रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर का मूल नाम हबीब अहमद खान था
0: और बचपन से ही साहित्य, कविता और रंगमंच में उनकी गहरी रुचि थी, जिसने आगे चलकर उन्हें भारतीय थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम बना दिया।
1: उन्होंने यह महसूस किया कि भारत की लोक कलाओं में अपार शक्ति है और इन्हें मंच पर उचित स्थान मिलना बहुत जरूरी है,
0: और इसी सोच के साथ उन्होंने लोक कलाकारों को अपना नाटकों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।
1: वर्ष 1959 में स्थापित उनका नया थिएटर समूह भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो साबित हुआ,
0: और इस मंच के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और लोक भाषा को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक नई पहचान दिलाई।
1: उनके प्रसिद्ध नाटकों में आगरा बाजार और चरणदास चोर जैसे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
0: और चरणदास चोर को दुनिया भर में सराहा गया और ये भारतीय रंगमंच की कालजीय प्रस्तुति में गिना जाता है।
1: हबीब तनवीर का मानना था कि रंगमंच केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को सोचने और समझने का माध्यम भी है,
0: और इसी कारण उनके नाटकों में सामाजिक सरोकार, व्यंग्य और मानवीय संवेदना प्रमुखता में दिखाई देती है।
1: उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और संगीत नाटकीय अकादमी पुरस्कार सहित उनके जो है काफी सम्मान उन्हें प्राप्त हुए।
0: और 8 जून 2009 को वो इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी कला और विचार आज भी जीवित है।
1: हबीब तनवीर ने भारतीय रंगमंच को केवल समृद्ध ही नहीं किया बल्कि उसे आम जन जीवन से भी जोड़ा है,
0: और यही कारण है कि उनका नाम भारतीय थिएटर में इतिहास में सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा। और हम बात करते हैं आज जिनका बर्थडे है, यानी शिल्पा शेट्टी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी प्रसिद्ध अभिनेत्री, मॉडल और फिटनेस आइकन है। उनका जन्म आज ही के दिन 8 जून 1975 को कर्नाटक में मंगलुरु, भारत में हुआ था, और उनके पिता का नाम सुरेंद्र शेट्टी और माता का नाम सुनंदा शेट्टी था, और उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम शिल्पा शेट्टी है, जो शमिता शेट्टी, जो खुद भी एक अभिनेत्री हैं।
1: शिल्पा शेट्टी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1993 में मिली फिल्म बाजीगर से की, जिसके साथ उनके साथ जो थे शाहरुख खान और काजोल थे। इस फिल्म से उन्हें काफ़ी पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, धड़कन, फिर मिले, लाइफ इन दी मेट्रो।
0: और 2000 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म धड़कन ने उनके करियर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड़ लाया और उन्हें विभिन्न पुरस्कार समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड में नाम दर्ज करवाया। और उन्होंने 2007 में ब्रिटिश रियलिटी टेलीविजन सेलिब्रिटी बिग ब्रदर जीतने के बाद एक वैश्विक हस्ती बन गई। और शिल्पा शेट्टी अपने फिटनेस और योग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए आज उनके बर्थडे पर हम सुनते हैं उन्हीं की मूवी का एक गीत।

0: तो चलिए बात करते हैं हम कान्या वेस्ट की, जो एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन रैपर, सिंगर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 8 जून 1987 को हुआ।
1: कान्या वेस्ट को उनके अलग अलग और नए स्टाइल के संगीत के लिए जाना जाता है। उन्होंने हिप हॉप म्यूज़िक में कई नए प्रयोग किए। वह सिर्फ गायक नहीं हैं बल्कि फैशन डिज़ाइनर भी हैं।
0: और उनकी करियर की बात करें तो उनका पहला एल्बम द कॉलेज ड्रॉपआउट 2004 में बहुत हिट रहा। इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने और एल्बम बनाए और उन्हें कई ग्रैमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं।
1: कान्या वेस्ट एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने म्यूज़िक और फैशन दोनों में ही अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी ज़िंदगी में सफलता के साथ साथ विवाद भी रहे, लेकिन उनका प्रभाव आज भी बहुत बड़ा है।
0: तो इसके साथ अब हम बात करते हैं कि आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं। इतिहास में आज के दिन यानी 8 जून का दिन भारतीय और विश्व स्तर पे कई महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों में एक बदलाव लिए जाना जाता है। अब बात करेंगे सबसे पहले 1936 में इंडियन स्टेट बॉक्सिंग सर्विस का नाम बदलकर आधिकारिक रूप में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया।
1: 1948 भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया ने अपनी शुरुआत की। इसकी पहली उड़ान बॉम्बे से लंदन के लिए भरी गई।
0: और इससे पहले हम बात कर रहे थे स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम जो बदल करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था। और इसका गठन के साथ साथ ही इसका ध्येय यानी मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपनाया गया और इसकी जनसेवा की भावना को दर्शाता है। और आज आने वाले वर्षों में ये देश की सबसे बड़ी और प्रभावशाली सार्वजनिक प्रसारण सेवा बन गया।

0: सेंसेक्स, अब दोस्तों बात करते हैं सेंसेक्स यानी शेयर बाजार वगैरह की। सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 244 अंक गिरकर 23,123 पर बंद हुआ। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 95.74 रुपए रही। बाजार में गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक तनाव और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें हैं। तो दोस्तों ये बात थी शेयर मार्केट थी, और मैं था आपका आज का रेडियो दोस्त हर्षित, और मेरे साथ थे
1: माहिन खान,
0: और आपको हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवानी अभी आपने
1: कार्यक्रम युवानी अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर।
1: प्राउड फैमिली विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्राउडली रिसीविंग द कीर्ति चक्र। दिस इज ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, फ्लाइंग कैप्टन, फ्लाइंग पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स।
0: कैप्टन लालविन ओमर साइलो, पैराशूट रेजिमेंट।
2: और अब विशेष दल चार पैराशूट के कैप्टन लाला रिनाउ साइलो आमंत्रित किए गए हैं कीर्ति चक्र के लिए।
0: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीवी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नस्तीक की मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और
3: सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे कीर्ति और आप सुन रहे हैं सुरीली शाम में ये खूबसूरत सा सफ़र संगीत के साथ। शाम का ये खूबसूरत वक्त अपने साथ लेकर आया है सुकून, मुस्कान और ढेर सारे सदाबहार नगमे। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालिए, चाय की चुस्किया लीजिए और संगीत के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ।

वाह क्या बात है दोस्तों, शाम का जादू और ऐसा गीत सुनने को मिल जाए तो मन अपने आप खिल उठता है। कहते हैं कि शाम सिर्फ दिन का अंत नहीं होती बल्कि नई उम्मीदों की शुरुआत भी होती है। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत।

हिमेश रेशमिया की आवाज़ में अभी खूबसूरत सा गीत आपने सुना, फिल्म थी आपकी खातिर। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूरी के बावजूद हमेशा दिल के करीब रहते हैं। ये गीत उन्हीं खूबसूरत एहसासों को समर्पित है। आइए सुनवाते हैं अगला गीत आपको, लक्की फिल्म से सोनू निगम की आवाज़ें हैं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गजनी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जावेद अली और सोनू निगम की आवाज़ें थी और संगीत था ए आर रहमान का। दोस्तों, समय कितना जल्दी गुजर जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे अभी तो हमारी मुलाकात शुरू हुई थी और शो अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया है। लेकिन विदा लेने से पहले सुनते हैं एक और शानदार गीत फिल्म यादें से अनु मलिक की आवाज़ में।

0: हरिहरन की खूबसूरत आवाजों को भी आपने सुना, फिल्म थी यादें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपकी शाम संगीत के साथ यादगार बनी होगी। मैं थी आपकी दोस्त कीर्ति और आपसे अनुमति चाहूंगी, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने प्रियजनों के साथ हर पल को खास बनाइए। नमस्कार, शुभ संध्या, फिर मुलाकात होगी फिल्म संगीत के अगले सेगमेंट के साथ रात 8 बजे। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब जुड़ते हैं जयपुर अजमेर केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर सुनेगा जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हित की विकास

0: यात्रा बताया है। आज श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना, किंतु इस विकास यात्रा के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनहित योजनाओं के जरिए सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति के विकास का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में 5 जून से 21 जून तक 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में हो रहे इस समारोह में अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है। ये बैठक कल से 13 जून तक इंदौर में होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की ये बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन आवासों में नल से जल, रसोई गैस और शौचालय की आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने इसे लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ा बदलाव बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले बैठक में शामिल हुईं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 125 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं।

0: राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा आज समाप्त हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 3 प्रत्याशियों ने 9 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 11 जून है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशियों ने आज अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण के समक्ष दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने उन पर भरोसा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया।
1: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा देके युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। CBSE ने मीडिया पर इस पोर्टल के काम नहीं करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। बोर्ड ने कहा कि नियम के मुताबिक केवल वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया था। राज्य में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव आलोक जैन ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किया। इसके अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
2: 8 जून का दिन देश की सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। साल 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्रों के माध्यम से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए दुनिया के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
0: राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों में आज कमी देखने को मिली और मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। एक ओर जहां श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पुष्कर में करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में अजमेर, बूंदी, कोटा, टोंक, झुंझुनू और भरतपुर में पानी बरसा। जैसलमेर में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 11 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार जताए हैं। इस दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने की संभावना है। 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ सकती हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम जारी हैं। इसके तहत लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए रोजाना सामूहिक योग

0: और प्राणायाम सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
1: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना, ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं, शरीर से और मन से मजबूत होते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। चाहे हम पैदल चलें, चाहे हम सीढ़ियां चढ़ें, चाहे हम नियमित रूप से खाना खाएं, ऑयल कम करें अपने खाने के अंदर, ये सारी चीजें एक फिट इंडिया बनाता है, एक मजबूत भारत बनाता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की गईं। 25 मई से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून को पर्यावरण दिवस तक चलाया गया। इस दौरान जल संरचनाओं की साफ सफाई, जल संरक्षण के कार्य, मरम्मत और पुनरुद्धार संबंधी कामों के साथ ही श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां रखी गईं। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने भी पौधरोपण कर पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। उन्होंने जाखम और भंवर सेमला बांध का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर मीडिया राउंड टेबल आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने परिंडे बांधे और पौधरोपण किया। जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मीडिया एक्सपोजर विजिट का भी आयोजन रखा गया। अभियान का समापन समारोह पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी की उपस्थिति में रखा गया। माही बजाज सागर बांध से पीपल खूट अपर हाई लेवल बहुउद्देशीय कैनाल परियोजना का निर्माण कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। 1565 करोड़ रुपए की लागत की इस अनूठी परियोजना में बिना भूमि अधिग्रहित किए पाइपलाइन डाली गई है। इसके जरिए जमीन से 3 से 4 मीटर की गहराई पर पानी बहेगा और ऊपर किसान खेती करेंगे। परियोजना के पूरा होने से प्रतापगढ़ सहित उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। लक्ष्य हासिल होने से अगली रबी फसल के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं जल जीवन मिशन के लिए जाखम बांध तक पानी पहुंचने से प्रतापगढ़ शहर और उसके 554 गांवों के अलावा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के 1899 गांवों को पानी मिलेगा। जिले के करजू और रावतपुरा गांव में इन दिनों किसानों ने आधुनिक मल्चिंग तकनीक अपनाकर नकदी फसलों की खेती शुरू की है। इस तकनीक से टमाटर और मिर्च सहित अन्य नकदी फसलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को गर्मी के मौसम में बोई जा रही फसलों से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। इस साल अब तक जिले में ये सातवीं बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि इससे पहले भी एक अन्य तस्कर की करीब 3.25 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं। पुलिस ने अभियान के तहत नौगांव के देवलदी गांव स्थित चारागाह से भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और जल संरक्षण तथा पौधरोपण कार्यों का निरीक्षण किया। इधर जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति की आयोजित हुई बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उन्होंने निर्देश दिए। सांसद सीपी जोशी ने दिशा समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों

0: निर्देश दिए। इस बार अधिक मास के चलते जिले भर में धार्मिक गतिविधियां चरम पर रहीं। मंदिरों और आश्रमों में अनुष्ठान हुए। अक्षय तृतीया पर धार्मिक स्नान और दान पुण्य किए गए। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में आखा तीज के अबूझ सावे पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। जिले में बीते दिनों मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी आंधी तो कभी बारिश की गतिविधियों ने जिलेवासियों को परेशान किया। वहीं बढ़ते तापमान और तपन ने भी लोगों को व्याकुल किए रखा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आई बारिश ने गर्मी का असर कम किया। इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथ चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम पूरो थियो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ने गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो है। श्री मोदी कहो के इन दौरान देश कई बदलावा रो गवाह बन्यो। प्रधानमंत्री कहो के जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत सरीखा हर जतन रो मकसद जनता सारू पूरा मानु जीवनु तय करनो है। श्री मोदी कहो के गरीब तबका री जनता री जिंदगी बेहतर बनावण माए प्रौद्योगिकी की खास काम कीनो है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के वानी डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनतारा भलारी योजनावां रे जरिए सेवा कर रही है। वे आज विधानसभा परिसर में राखी जी विधायक दल री मीटिंग में बोल रहा हा। श्री शर्मा कहो के प्रदेश में आखिरी छोर ताई रा हर एक जनारो विकास तय करियो चाह रियो है। ध्यान जोग है के राज्य में 5-21 जून ताई 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलायो जा रियो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह रा पहला दौर में सशस्त्र बलों रा और सुरक्षा कर्मचारियों रो मान कर रही है। जबरदस्त हिम्मत और समर्पण रो दर्शाव करन वाला जवाना ने इन कार्यक्रम में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण नवाजा जा रहा है। जलसा में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियां शामिल है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स रा सदस्य देशां रा कृषि मंत्रियां री मीटिंग काल मध्य प्रदेश रा इंदौर में शुरू फैला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो के 13 जून ताई भेवन वाली मीटिंग री सदारत भारत करेला। श्री चौहान कहो के मीटिंग में किसाना री आमदनी, काम धंधा, खेतीबाड़ी सारू कर्ज और बाजार ताई पहुंच बधावन रा जतन रे बारा में चर्चा करी जावेला।
3: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े।

0: और सहयोग भी बढ़े आपस में, निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आम मकाना माय नल, पानी, रसोई गैस और शौचालय रा बुनियादी सुविधा मुहैया कराई चिया है। वे इन गरीब परिवारा सारू मोटा बदलाव बतायो। केंद्रीय मंत्री कहो के लाडला 12 साल माय देश माय सगला रो विकास और तेजी उम्फियो है। विपक्षी पार्टियां रा इंडिया गठबंधन री आज नई दिल्ली माय मीटिंग हुई। इन माय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस रा आला नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी रा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस री अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रा नेता उमर अब्दुल्ला और NCP शरद पवार गुट री सुप्रिया सुले शामिल थिया। जयपुर विकास प्राधिकरण री ओरू आज जयपुर शहर में गैर कानूनी कब्जा हटावन री मोटी कार्रवाई करी जी। नंदपुरी अंडरपास रेलवे लेन रे बराबर री सड़क ने 80 फीट चौड़ी करण सारू चलाई जिया। ई अभियान रा तहत 125 बत्ता गैर कानूनी तौर करी जिया बनाई चुनाई रा काम हटाई जिया। ई दौरान एहतियातन 3000 बत्ता पुलिस वाला तैनात करी जिया, जदक कई हलका माय मोबाइल और इंटरनेट जुड़ी सेवाएं बंद रखी जी। जयपुर रा संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार का नियम जारी हुकम रे मुजब बेगोई आ हलका माय इंटरनेट पाछो चालन री संभावना है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव सारू प्रदेश 3 सीटां माथे चुनाव बाबत पर्चा दाखिल करण री मियाद आज पूरी फेगी। राज्य रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बतायो के प्रदेश 3 उम्मीदवार 9 पर्चा दाखिल कीना। भारतीय जनता पार्टी री ओरू डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर आज नाम पाना, रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण सामी पेश कीना। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जनता रा और कई नुमाइंदा मौजूद हा। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री पूनिया वा माथे भरोसो करण सारू भाजपा रा केंद्रीय नेतृत्व रो आभार जतायो।
2: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा, जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा दे के युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
1: कांग्रेस पार्टी री ओरू नीरज डांगी पहले पर्चो दाखिल कर चुका है। नाम 11 जून तक पाछा लिया जा सके है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ई साल 12वीं कक्षा री परीक्षा सारू नंबरां रो सत्यापन करण और कॉपियां ओजू जंचावण सारू अर्जी देवण री विंडो 2-7 जून ताई लगातार चालती रहवण रो दावो कीनो है। बोर्ड रे मुजब इन दौरान 1,60,000 बत्ता विद्यार्थी 3,08,000 बत्ती कॉपियां सारू अर्जी दीनी। CBSE भ्रम दूर करता थका बतायो के रोल नंबर नॉट फाउंड री जानकारी रो कारण ई प्रक्रिया रा पहला दौर माय कॉपी री फोटोकॉपी लेवण री अर्जी नी देवणू हो। बोर्ड रे मुजब नियमा रे मुताबिक कॉपी री स्कैन कॉपी हासिल करण सारू अर्जी देवण वालाई अगला दौर सारू पात्र वे है। राज्य री सरकारी स्कूलां माय गर्मी री छुट्टियां 28 जून ताई रहवेला। शिक्षा विभाग रा शासन उप सचिव आलोक जैन री ओर जारी हुकम रे मुजब गर्मी री छुट्टियां 17 मई 20 जून ताई 35 दिन री करी जी ही, जो अब वधार 43 दिन री कर दी री जी है। हुकम रे मुजब संस्था प्रधान री ओर 1 री बजाय अब 2 दिन री छुट्टी दी जा सकेला। आज आकाशवाणी रा गौरवशाली 90 साल पूरा फेंक्या। साल 1936 में आज ही रा दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो नाम दियो चियो हो। पेश है समाचार कक्ष डॉक्टर सालेहा गाजी री रपट।
3: साल 1956 माए इनरो आकाशवाणी नाम दियो जियो। आज देशभर माए आकाशवाणी रा 551वां केंद्रा रे जरिए 23 भाषा

0: अलावा अर 146 बोलिया माए कार्यक्रम प्रसारित करिया जावे है जो देश री 98 फीसदी आबादी ताई पूगे है। इस आगे ही आकाशवाणी रो विदेश सेवा विभाग दुनिया रा 132 देशा माए भारत री आवाज पुगारियो है। आकाशवाणी रो समाचार सेवा प्रभाग बहुजन हिताए बहुजन सुखाए रा आदर्श सागे रेडिया प्रसारण रा सब ऊंचा मानकारी पालना करता थका 2400 घंटा सगली भाषावा अर बोलिया माए समाचार अर समाचारों जुड़िया कार्यक्रम प्रसारित करे है।
1: अरब मौसम राज्य रो कई हल्का माए आंधी बारिश री हलचल आज थोड़ी कम रही। इन कारण श्रीगंगानगर माए पारो 44 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो। जैसलमेर माए जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दूजी कानी अजमेर कने पुष्कर माए करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। लाडला 24 घंटा माए अजमेर बूंदी कोटा टोंक झुंझुनू और भरतपुर माए में बरसियो। मौसम विभाग 11 जून ताई आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए कमी रा आसार जताया है। इन दौरान उगनी और उत्तराद उगनी हलका रे अलावा मौसम सुखो रेवन री संभावना है। रजरा आतुनी हलका माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चटबारा आसार है। 21 जून न मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम चल रहा है। इन तेत जीवन रा स्वस्थ तरीका न बधावो देवन रा मकसद रोजिना योग और प्राणायाम रा सत्र रख्या जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनताओं आ कार्यक्रम माय भागीदारी करण री अरज कीनी है।
2: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं शरीर से और मन से मजबूत होते हैं तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है।
1: आखिर माय खास समाचार एक कर फेरू सुन ली राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लाडला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश माए प्रधानमंत्री आवास योजना रा तेज हाल ताई 4 करोड़ 32 मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो भियो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं खेती बाड़ी से जुड़ा कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम नानू भाई, राम राम।
1: राम राम ममता बैसा, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम सुना वाला सगला किसान भाई ने आपनो
1: राम राम सा।
0: देखो नानू भाई, कार्यक्रम रो टेम भी हो और आप आया हाँ किसान भाई रहते हो जानकारी लेने। प्यारा प्यारा राजस्थानी गीत सुनावांगा, लारे लारे आपा किसान भाई ने मौसम री जानकारी भी करावांगा। और देखो आपा किसान भाई रहते नित नवी नवी योजना भी लेने आया हाँ। और देखो बातचीत करांगा कि गर्मी में पशु री सुरक्षा अपने किसान भाई किस तरह कर सके। तो देखो नानू भाई, आज आपा चौपाल री बात में किसान भाई ने कई जानकारी करी रहा सा।
1: बिल्कुल सा, चौपाल री बात में देखो किसान भाई बहना वाते जानकारी लेने आया हाँ कि कृषि स्टार्टअप जो है वना कड़ी प्रकार देखो कृषि में अपनी भूमिका निभाई और कृषि में बदलता लगा जो व्यवहार आपने देखो दिखाई दे रहा है, तो वनडी बातचीत आपा करा सा।
0: बिल्कुल सा। तो देखो नानू भाई, कृषि स्टार्टअप आपने बदलती खेती की बात करा तो आधुनिक जो भारत है अणी में अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती बाड़ी रो जो परिदृश्य है वन्ने बदलवा में आपा देखा कि कृषि रा जो स्टार्टअप है नवी नवी तकनीका क्रांतिकारी साबित हुई रही है। पारंपरिक रूप में भारतीय कृषि ने कम मुनाफो और अधिक जोखिम वालों क्षेत्र अत्रदना सब किसान भाई रहते वण्यो थको हो और आपा भी माना हाँ, क्योंकि बे मौसम बरसात वेजा कदी हुको वे कदी अतिवृष्टि ओलावृष्टि अणी कारणों आपने किसान भाई ने नरो सारो जोखिम उठाणो पड़े। जटे किसान भाई मौसम री अनिश्चितता, बिचोलिया रो शोषण और आधुनिक

0: तकनीक है वन्य भाव में जूझता रेवे हैसा।
1: बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन आपने अभी वो बता ही रहा कि अबे जो भारत है वो देखो तकनीकी रूप में आगे बढ़ रहा है। सब किसान भाई भी जान रहे हैं कि युवा और उद्यमी जो है वहाँ कृषि स्टार्टअप के माध्यम अनेक क्षेत्र की तस्वीर बदल दी थी। ये स्टार्टअप न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करवा में खेती परंपरा में जुड़िया है, बल्कि विज्ञान री सटीक दिशा में भी आगे ले जा रहा है।
0: बिल्कुल सा, और पारंपरिक रूप में आपा किसानों ने बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि राज्य उपकरण है वन्य खरीदवारे वाते स्थानीय जो डीलर है वना पे निर्भर रहना पड़ता हो। छठे आपा देखता कि उत्पाद और वना की ऊंची कीमत है वना रो जोखिम हमेशा वणियों थको रहता हो सा।
1: लेकिन अभी देखो बाजार में नरेहरा जो कृषि स्टार्टअप है भी देखो मौजूद है, और किसान भाई जो है घर बैठा सीधा देखो उच्च गुणवत्ता वाला प्रमाणिक बीज है, उर्वरक है, उपकरण है, और कृषि में जो नित नई तकनीक है भी आना स्टार्टअप के माध्यम में देखो अपना ही रहा है, और खुद तो माला माल वे रहा, लेकिन और भी जो किसान भाई बहन है वड़ा ने भी अन्य अपना वारी सलाह दे है।
0: बिल्कुल सा, स्टार्टअप आपा देखा खेती में अत्याधुनिक तकनीक ने पेश कियो गयो है जणी में समय री लागत कम पड़े, संसाधन जो संसाधन है बनारी भी भारी बचत वेवे है सा। लारे लारे आपा देखा किसान भाई ड्रोन तकनीक रो उपयोग भी खेती बाड़ी में करे है। जणी में आपा देखा गरुड़, एरो स्पेस जैसा स्टार्टअप खेता में नहीं केवल कीटनाशक रे वाते सुरक्षित छिड़काव करे, बाकी वना ने ड्रोन भी प्रदान करी रहा है और अणारे जरिए फसलारी जो सेहत है वनी भी निगरानी रही रही है सा।
1: और IoT और सेंसर आधारित सिंचाई की जटे बात करें तो मिट्टी में नमी ने नाप वाला सेंसर विकसित किया गया जो एक खेत ने वास्तव में पानी की कतरी जरूरत है वही जरूरत ने पूरी करता लगा। सिंचाई पंप देखो स्वतः चालू हुए और स्वतः बंद हुए, अणु जो पानी और बिजली जो है वह भी भारी बचत हुए और किसान भाई बहना ने लाभ हुए।
0: बिल्कुल सा, AI की बात करा तो AI रे द्वारा कई वे रोग री पहचान वे प्लांटिक्स जैसा एप्स किसानों ने केवल पौधा री बीमारी वाली तस्वीर खींचवारी सुविधा देवे और तुरंत आपा देखा बीमारी ने पहचान वारी वनो सटीक उपचार भी बतावे है सा।
1: जटे देखो भारतीय कृषि रे सबसे बड़ी कमजोरी आपा क्योंकि खेत बाजार तक रे दोषपूर्ण व्यवस्था है कि किसान भाई बहन देखो उत्पादन तो कर ले लेकिन वना फसला ने बाजार तक पहुंचा रहे बात है वना ने देखो सही मार्ग नहीं मिले क्योंकि बिचौलिया जो है वे किसाना ने कम मुनाफा दे ने और वनारी वस्तुआ खरीद ले और सीधे बाजार में नहीं देने बाजार में वनारी कमी दर्शावे। लेकिन आजकल आसान रही आ रहा जो ऐप्स है वी आई के तो किसान भाई घर बैठा मंडी रो भाव जान सके, बिचौलियों राहत मिल जाए और जहाँ फसल वे उत्पादित करे वो पूरा रो पूरा मूल्य वनाने प्राप्त वे है।
0: बिल्कुल सा, ये कई करे कि सीधा किसाना ने फल और सब्जियां खरीदता टेम कुछ ही घंटा में बनारे शहरा रो जो खुदरा विक्रेता है, होटल है, सुपरमार्केट है, वटा तक पहुंचे ही देवे सा।
1: और आपा सब जाना कि बिजोलिया रे हटवार कारण किसान भाई जो है वना रे उपज रो पूरा मुनाफा ले ले और कई सारा स्टार्टअप ऐसा है जो घर बैठा लगा वना ने ट्रैक्टर उत्तम अन्य कृषि कार्य स्प्रिंकलर सिस्टम है या फिर खेती बाड़ी संबंधित उपकरण है मार्केट री जानकारी ये सब भी वना ने प्रदान करावे है।
0: बिल्कुल सा, लारे लारे आप टिकाऊ खेती की बात करा तो जैविक खेती ने बढ़ावा देनो, पर्यावरण संकट और रसायन जो अत्यधिक उपयोग है वणी में बंजर वेथी थकी जमीन ने बचावा रे वाते भी स्टार्टअप अहम भूमिका निभाई रहा है सा।
1: आपा जाना कि किसान भाई जैसे स्टार्टअप जो है मिट्टी और जो नियोजित वातावरण है वन में भी देखो फल और सब्जियां उगावरी तकनीक दे रहा। पहला खेता में देखो बहुत बड़ा जो इस तरह वन पे देखो कृषि करता और वत्रो लाभ नहीं मिलता, लेकिन अब छोटा पैमाना पे भी अच्छी और बढ़िया जो सब्जियां है वनारो उत्पादन कियो जा रो और किसान भी वनडो भरपूर लाभ ले रहा और दूजा जो किसान भाई भी है वड़ा ने भी अन्य जानकारी दे रहा है।
0: बिल्कुल सा, कृषि स्टार्टअप नानू भाई भारतीय कृषि रे वाते एक नयो दृष्टिकोण दीदो है और वना खेती ने केवल एक जमीनों जीवारो एक साधन नहीं मानी ने वने एक लाभदायक व्यवसाय रे रूप में स्थापित कीदो है। तकनीक रा समावेशन ने केवल युवारो रुझान ने दोबारा खेती की ओर बढ़ाई रहा है बल्कि ये ग्रामीण स्तर पे रोजगार रा नया नया अवसर भी पैदा कर रहा है सा।
1: बिल्कुल सा, तो ये देखो या तो कि आप बातचीत की कृषि स्टार्टअप को कई प्रकार देखो किसान भाई जो है खेती बाड़ी ने बदल दी दो है और कार्यक्रम में को तो किसान भाई बहन रो मनोरंजन करा और होना एक प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत।
0: हाँ सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो ममता भैसा यो तो उन्हें प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा। देखो अब किसान भाई बहना ने दा मौसम संबंधी जानकारी और सामान्य कृषिगत जानकारी। देखो मौसम विज्ञान विभाग को प्राप्त जानकारी के अनुसार देखो आगामी दशा में देखो जो है देखो तापमान में कमी और बढ़ोतरी चल रही है। देखो जटे अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान है 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की जटे बात करें तो वो है 23 डिग्री सेल्सियस। और देखो आसमान में देखो कणिक तेम जो आंधी रे संभावना देखो बार दिखने लगे लेकिन कटे कटे देखो जो है छांटा वर्खा री संभावना देखता लगा। किसान भाई ने देखो फसला में हाव चेती रखने जरूरी है सर।
3: बिल्कुल सर। तो नानू भाई या तो भी मौसम री जानकारी और अभी आप सामान्य फसला री बात करा तो अणी मौसम में बेल वाली जी फसला है वणा में किसान भाई ने न्यूनतम नमी वणी रखनी है। बाकी कई वेगा कि मिट्टी में कम नमी वेवारा जो परागण है वणा पे असर वही सके। चण्यू फसल रो उत्पादन है वणी में कमी आई सके और फलदार जे पौधा है वणा रो बगीचा लगावा रे वाते उचित दूरी पे गड्ढा खोदी ने वणा ने खुला छोड़ देना है और वर्षा वेवा पे पौधारी है जो रोपाई करनी है सा।
2: बिल्कुल सही कह रहा हो। देखो जटे गर्मिया में अब गहरी जुताई रही अगर आप बात करा तो आगामी जो फसलें वण में देखो मक्का दलहनी तिलहनी और सब्जी वर्गीय फसलों में देखो पुट्टी रेनी वर्म और जड़ गांठ सूत्र कमेरे प्रबंधन रवाते खेत में 15-20 दिन रे अंतराल पर देखो गहरी जुताई करानी है और फलदार पौधा जिस तरह अमरूद है अनार है और नींबू वर्गीय फलारा बगीचा लगा रवाते उचित दूरी 6x6 मीटर गहरा गड्ढा खुला खोदने वणा ने खुला छोड़ देना है।
3: बैंगन री बात करा तो बैंगन री जो फसल है वणी में प्ररो और फल छेदक जो कीट है वन्य बचावरे वाते ग्रसित जे फल है प्रोरो ने इकट्ठा करी ने नष्ट करी देना है। यदि कीट री संख्या अधिक वे तो स्पेनोसेड कीटनाशी 48 cc 1 मिली 4 लीटर पानी दर छिड़काव करनो है। आसमान साफ है वापे।
2: और कुष्मांड कुलरी सब्जिया में देखो लाल ब्रंग कीट अंकुरित और नई पत्तियां ने खाई ने फसला ने हानि पहुंचावे। अंडी रोकथाम वाते साइपर मैथरिन 26 cc जो है 0.5 ml प्रति लीटर ही दरों हांजरी टेम देखो किसान भाई जो है वो छिड़काव कर सके।
3: पौध संरक्षण की बात करा तो जटे मिर्च भिंडी तरबूज खरबूज पीच शिरा विषाणु रोग रो प्रकोप है वटे किसान भाई इमिडोक्लोप्रीड 8 ml 15 लीटर पानी में घोल वणी ने 8 दिन रा अंतराल में 2 बार छिड़काव करें और अन्य पत्ती दवा जो रोग है वने नियंत्रण रे वाते इमिडोक्लोपीड रो छिड़काव 5 दिन रे बाद 22 दिन रे या पचे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी रो घोल वणी ने नो छिड़काव करनो चावे सा।
2: बिल्कुल सर। और जटे देखो मौसम में परिवर्तन री बात कर रहे हैं और देखो अब बार देखो 2-3 दिन तो अपने लागो की जिस तरह देखो वर्खा पानी लेकिन अभी धीरे धीरे देखो तापमान पाछो बढ़ रहे हो तो अने टाइम पे देखो अपने तो स्वास्थ्य रो आप ध्यान रखा ही रखा लेकिन जो किसान भाई देखो पशुपालन भी करे तो वणा ने पशुआ रो भी विशेष ध्यान रखनो है। वणा रे पीवा रे वाते देखो स्वच्छ और ताजा पानी जो है सुबह दोपहर हांजरी टाइम वणा री देखो रखनो है। अंडे लारे लारे जो जटे चारा री अगर आप बात करा तो वणा ने देखो टाइम पर हरो चारो जो है वो देनो है। लारे लारे जो खनिज लवण है वणा रे मिश्रण रो भी देवारो ध्यान रखनो है सा।
3: और देखो भारी गर्मी और उमस ने देखता थका पशुआ ने छायादार स्थान पे बांधनो है। वणा रे हवा पानी री बराबर व्यवस्था करनी है। वणा ने छाया में बांधना है और दोपहर आप देखा 11 बजे से 4 बजे तक वणा ने खुला मैदान में चरवा वाते नहीं ले जाना है और आपके साफ सुथरा पानी री वणा रे हमेशा व्यवस्था किसान भाई ने करी ने रखनी चावे सा।
2: बिल्कुल सा। तो यह ही देखो मौसम री जानकारी और सामान्य कृषि की जानकारी और कार्यक्रम में आगे बढ़ा और करा किसान भाई बहना और अपना सबरो मनोरंजन अणी राजस्थानी लोकगीत लरे।
3: हाँ सर।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो देखो ममता भाई सही होते होने प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत और लाल ला रहे होने संदेश। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा आपा किसान भाई बहना ने रोजाना देखो एक योजना जो सरकारी चलाई जा रही है वनडे जानकारी किसान भाई बहना ने करावा ताकि वी भी अणु लाभान्वित हो सके। तो आज आप कणी जानकारी लेने आया हो सा?
8: तो देखो रानू भाई, आज आपा किसान भाई वाते योजना लेने आया हाँ कि अटल भूजल योजना कई है सा। देखो अटल भूजल योजना भारत सरकार एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और पथ प्रदर्शक योजना है, जनो मुख्य उद्देश्य है देश रा जो संकटग्रस्त क्षेत्र है वणी में भूजल रा प्रबंधन ने सुधार करनो और गिरता थका जल रो स्तर है वने रोकनो। या योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी रे विजन ने समर्पित है सा।
7: बिल्कुल सही कह रहा, अटल भूजल योजना जो है देखो भूजल ने बचाओ रे सरकारी योजना और अणमे केंद्र और विश्व री भागीदारी है। और देखो 1 अप्रैल 2020 या शुरू हुई और अंडो मुख्य मकसद जो आपकी हो देखो गांव वाला रे लारे मिलने भूजल ने बचाणो है। सिर्फ सरकारी ट्यूबवेल ही नहीं बल्कि जो है कि भूजल जो जमीन में है वरने आपने अधिकाधिक बढ़ाणो है ताकि जो जल री कमी है वह पूरी की जा सके।
8: बिल्कुल सा, अणि योजना री शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2019 ने शुरू की दी ही। वही अटल बिहारी वाजपेयी 95वीं जयंती ही और अन्य औपचारिक रूपों 1 अप्रैल 2020 में लागू की दो गयो। यह योजना पूरी तरीकों सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष पे आधारित है सा।
7: बिल्कुल सही कह रहा हो जटे। देखो अणि योजना री आप बात करें तो भारत जैसा देश में देखो आप जाना कि लगभग 65% कृषि और 85% ग्रामीण पेयजल आपूर्ति जो है देखो भूजल पर निर्भर है। और तेजी में वेत लगा शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और दोषपूर्ण फसल चक्र के कारण भारत में कई हिस्सा में देखो भूजल रो अंधाधुंध दोहन भी हो झंडे कारण अणि योजना में भूजल बढ़ावा री बात की दी गई।
8: बिल्कुल सा, तेजी

0: हुए तो थको शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और दोषपूर्ण फसल चक्र जो है, जणी में कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जणी में धान और गन्ना की खेती है, वटे कारण कई वे की भारत रा कई हिस्सा में भूजल रो अंधाधुंध दोहन वेरो हैसा।
1: और जटे देखो भाई, याद करें तो यणी योजना रे मुख्य घटक में राजस्थान में भूजल निगरानी नेटवर्क ने मजबूत करने, जल विज्ञान संबंधी जो डाटा है वणा ने एकत्र करने, स्थानीय स्तर पर लोगों ने प्रशिक्षित करवारो प्रावधान किदो गयो है।
0: बिल्कुल सा। अणि मैं लक्षित राज्य की बात करा तो यह योजना 7 राज्य में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का चुनिंदा जो जल वाला 80 जिला है वहाँ में लागू की दी जा रही है।
1: और जटे देखो आप राजस्थान रे बात की दी, तो राजस्थान में देखो आप बात करा कि जल बजट जो है वंडी बात की दी गई। अणि योजना में देखो भूजल पुनर्भरण में सुधार वाते, जल संरक्षण विद्या ने बढ़ावा देनो, जल संसाधन ने प्रबंधन ने सुदृढ़ करनो, ये भी अणि में शामिल है।
0: और यह पहल देश भर रा विभिन्न जो क्षेत्र है वहाँ ने लक्षित करे है। विशेष रूप में आप देखा ग्रामीण जो क्षेत्र है वहीं में सतत जल उपयोग प्रथा ने बढ़ावा देवा पे ध्यान केंद्रित करे है सा।
1: और अंडो लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने जल संरक्षण गतिविधियों में भाग लेवा रहे वाते प्रोत्साहित करनो, जागरूकता बढ़ानो और पानी रे उपयोग में कुशलता लानो और खेती में ड्रिप या पचे बूंद बूंद सिंचाई विधि या पचे फंवारा सिंचाई विधि जो है वन्ने बढ़ावो देनो है।
0: अनो लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत जो है वे सीधे तौर पर जोड़ी ने जल संरक्षण विधियां ने अपनावे, फसल रा पैटर्न में बदलाव करे और भू जल ने रिचार्ज करने वन्ने प्रोत्साहित करे। चना क्षेत्र में जमीन के नीचे पानी बहुत ही तेजी खत्म वेरो है वटे भू जल की स्थिति ने सुधारनो है सा।
1: और अण में वर्षा आधारित उच्च उद्यानिकी मॉडल रे तहत अगर देखा तो प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पॉन्ड है, सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो आप बूंद बूंद सिंचाई विधि की या बचा फुंवारा सिंचाई विधि की, प्लास्टिक मंचिंग विधि की या बचा ग्रीन हाउस या शेड नेट बना और बात है जो किसान भाई बहन है वड़ा ने देखो सब्सिडी भी प्रदान की दी जावे ताकि किसान भाई जो है वड़ा रो लाभ उठे ना जल्दी जो योजना है अन्य पूरा कार्य करे सा।
0: और अन्य योजना में नानू भाई एक प्रोत्साहन घटक भी है, अन्य तहत कहे कि आवंटित जो राशि है वे वना राज्य आरा प्रोत्साहन रूप में वना राज्य ने दी जावे, जो भूजल रा प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन करे है और पानी की बर्बादी ने रोके है सा।
1: तो देखो लोगों ने समझना चाहे कि पानी एक सीमित संसाधन है और अंडर प्रबंधन में स्थानीय लोग जो है वे अपनी ज्यादा भागीदारी निभा सके।
0: तो नानू भाई देखो या तो भी जानकारी और अब आपके हो तो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत कार्यक्रम में और सुनावा सा।
1: बिल्कुल सर।

0: तो देखो सही हो तो हुणे आपा प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम आगे बढ़ता लगा। आप देखो किसान भाई बहनों ने आपा जानकारी दा कि गर्मी में पशुधन है वंडी सुरक्षा कई प्रकार की जा सके। और आपा सब जाना कि किसान भाई जो है देखो खेती बाड़ी तो कर ही है, लेकिन खेती बाड़ी लारे लारे पशुधन भी पाले है। क्योंकि देखो पशुधन जो है वो देखो न केवल अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था रो आधार है, बल्कि पशुधन द्वारा जो है देखो अपने आय भी जो है वन में भी बढ़ोतरी वे वह सर।
1: बिल्कुल सा। और नानू भैया बार आप देखी ना हाँ कि मौसम दो तरीका रो मौसम वेरो, अपने उमस भी देखवाने मिली रही है, कभी बावल डूजी मतलब परिवर्तन वेरो है मौसम में। और गर्मी रो जो मौसम है अणी टाइम पे अपने पशुओं की सुरक्षा अपनी पहली जिम्मेदारी बने सा, क्योंकि पशु अपनो एक धन है। और वो अगर आप देखो दूध दही घी सब आप पशुओं से प्राप्त करा तो अपने पशुओं की सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी है सा। देखो गर्मियों में तापमान अधिक व्यवहार कारण कही कि अपना जो ढांडा चोपा है वे बीमार पड़ जा, लू भी लागी सके। और अणियों कही कि मना ढांडा चोपा री जो दूध देवारी क्षमता है वह घटी जावे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो नानू भाई प्यारो सो राजस्थानी लोक गीत सुनाए और लाल लारे आपा संदेश भी सुने
3: बिल्कुल सा।
2: और आपा देखो किसान भाई रे वाते कार्यक्रम में नत नवी जानकारी लेना आवा और प्रमुख दिवस वे बने बारे में भी बतावा। तो देखो आज है विश्व महासागर दिवस, अन्य बारे में जानकारी करावा। तो विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून ने दुनिया भर में मनायो जावे। यो दिन आपने याद दिलावे कि महासागर अपने जीवन में अपनी पृथ्वी और अपने भविष्य रे वाते कतरा महत्वपूर्ण वेवे। मानव जीवन में महासागरारो जो योगदान है वणाने सरावा वणारे संरक्षण रे प्रति जागरूकता फैलाणो अन्य वाते यो एक महत्वपूर्ण और वैश्विक आयोजन है सा।
3: बिल्कुल सही कह रहा हो। विश्व महासागर दिवस मनावारी अवधारणा सबसे पहला देखो 1992 में ब्राजील रा रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कनाडा सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई और अनेरे कारण संयुक्त राष्ट्र मान्यता रे बाद अन्य मनायो गयो सा।
2: बिल्कुल सा। और अन्य बात संयुक्त राष्ट्र महासभा दिसंबर 2008 में एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित की दो और 8 जून 2009 में पहलो आधिकारिक विश्व महासागर दिवस मनायो गयो सा।
3: बिल्कुल सही कह रहा हो। जड़े देखो महासागर की बात करें तो महासागर अपने जीवन में देखो बहुत सारा महत्व रखे। महासागर केवल पानी रो विशाल भंडार नहीं है बल्कि वे पूरी पृथ्वी में पारिस्थितिकी तंत्र ने नियंत्रित करे है। ऑक्सीजन रो मुख्य स्रोत भी है क्योंकि पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन रो लगभग 50% अधिक हिस्सों महासागर में रहने वाला जो सूक्ष्म समुद्री पौधा है वनडे द्वारा उत्पादित है और यह जीवनदायिनी है सा।
2: बिल्कुल सा। जलवायु नियंत्रण की बात करा तो महासागर सूर्य हुआ वाली जो गर्मी है वन्य सोखे है और वैश्विक जो तापमान है वन्य और मौसम चक्र जैसे मानसून है वन्य संतुलित रखे। अधिक लोग अपनी आजीविका और प्रोटीन रा मुख्य स्त्रोत रहते समुद्री जे जैव विविधता है वहीं पे निर्भर रहे है सा।
3: बिल्कुल सही। और जटे संरक्षण रे अगर आप बात करा तो अणमें देखो सबसे पहला आपने चाहे कि प्लास्टिक जो है वन पे प्रतिबंध लगावा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर अगर रोक लगेगा प्लास्टिक री थैलियां बोतला और जो नली आदि रो आप उपयोग करा वन्य बंद करने आप समुद्र तक पहुँचवा वाला जो कचरो है जन प्लास्टिक कचरों का अन्य अगर आप रोकांगा तो यह अपने महासागर ने बचाव रही एक बड़ी मुहिम है।
2: और समुद्र तट और नदियों के किनारे कचरो नहीं फैलाणो और सामूहिक जो सफाई है वर्णा अभियान में भाग लेने समाज में जल निकाया रे संरक्षण ने लेने बातचीत और शिक्षा ने बढ़ावा देनो है ताकि कई वे की सब जना जागरूक हुई जा और अन्य अभियान में शामिल हुई जा सा।
3: और जटे देखो वर्षा जल संचयन रे अगर आप बात करो तो बारिश रे पानी ने देखो आप इकट्ठा करो और यदि वो भूजल स्तर में जाएगा और वापस वो बरसात रूप में नदी नाला में देखो आएगा तो जो आप महासागर ने बचाव की बात कर रहे हैं उनमें कठिन घटे एक बड़ो महान योगदान वेगा। और विश्व महासागर दिवस एक उत्सव नहीं बल्कि अपने अस्तित्व ने बनाए रखवा रो एक निरंतर संकल्प है। महासागर की सेहत सीधे तौर पर मानव जाति की सेहत जुड़ी है और अन्य अपने बचाणो है।
2: आपा सब मिली ने यो संकल्प लेवा कि आपा अपने जल ने स्त्रोत ने प्रदूषित वेवा बचावांगा और प्रकृति री अणी अनमोल जो उपहार है वनो आपा सब जना सम्मान करांगा सा।
3: तो देखो या तो भी आज रिदन री बात और को तो कार्यक्रम में चलता चलता सब किसान भाई बहन बैठा है सब रो मनोरंजन करा और हुना एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत।
2: हाँ सर।

0: तो देखो नानू भाई, कार्यक्रम में हो जानकारी कराई और अबे
1: बिल्कुल
0: घड़ी आड़ी देखा तो आपने चाल वारो टेम वे गयो सा। तो चाला सा जय जवान
1: जय किसान।

कार्यक्रम खेती और घर अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद विषय पर विशेष वार्तालाप। कृपया इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: इस विशेष कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
0: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं, आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं, वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं, फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है लेकिन आपको ज्यादा मालूम है, हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
2: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है क्या इतना लोकप्रिय होता, कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे, इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी, इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि

आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या

0: ये आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी, और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय है, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है। आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरपल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है, या पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो अडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूँ जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साथ। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलियान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार, जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, अमिला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार

0: जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने एफएम रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा सीएम डेड। अब ये हो गया शूटिंग लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा सर हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सेटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड उसका फॉलो अप क्या है। तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
2: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने एफएम चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए और उसके बाद फिर ऐसे लगने लगा शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम की है वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो।
3: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा। और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर

0: मनाया जाता है
1: हमारे आकाशवाणी में। आज वो स्टूडियो है
0: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे। इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न का टोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से, हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे।

0: के कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो, तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनो।
1: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन, उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशन या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं, और इन कार्यक्रमों को हर छात्र, युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम मनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं, तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
0: कवियों हो, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा,
1: सबने, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद, और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
0: स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980 82 83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ, और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया, तो वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेट्रो रिकॉर्डर हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था, लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते हैं। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी

0: हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे। तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया। विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो, या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे। और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया। और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए, अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है। आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे। आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था। हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी। आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्यता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन

0: है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय तंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे। लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है। ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है।
1: बिल्कुल।
4: और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पर जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है,
1: बिल्कुल,
4: तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो

0: रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
2: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद रेडियो वाली है और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
1: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है।
2: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
0: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
0: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो बैंक के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाने से कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कहीं पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे हैं। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
4: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही, और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासकर समाचारों के प्रति,
4: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
1: बिल्कुल।
4: और जितने लोग भी कार से सफर
1: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो
4: इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं, तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
1: बिल्कुल।
5: नमस्कार। मैं एज इंजीनियर यहाँ, मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
5: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया। मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और आप भी आइए।
6: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है

0: हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए, क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
1: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए, किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
2: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है
1: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
2: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी तो अभी मैंने कुछ दो तीन पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि मन ने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
3: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
4: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
5: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे विशेष वार्तालाप आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद विषय पर, प्रसारण किया गया दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी की दिल्ली उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार संध्या और तत्पश्चात सुनेगा न्यूज 8:09।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
7: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र

0: लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परम्पराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती

0: जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
1: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दिल की बातें जब जुबां तक नहीं पहुंच पाती है तो नजरें और मुस्कानें उनका पैगाम बन जाती है। कुछ ऐसे ही मीठे एहसासों से सजा था ये प्यारा सा गीत, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई।

कार्यक्रम सुगम संगीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। इसमें आज आपको सुनवाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। तबला पर संगत कर रहे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन।

शास्त्रीय संगीत अभी आप सुन रहे हैं, आइए अब आपको सुनवाते हैं पंडित रविशंकर का सितार राग, और तबला प्रसंगत कर रहे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन।

अभी आप शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत का पहला गीत हमने चुना है फिल्म सूर्यवंशम से, और इस गीत को अपनी मधुर सी आवाज़ें दी है कुमार सानू ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं विरासत फिल्म का ये गीत, और इस गीत को गाया है जसपिंदर नारूला और कुमार सानू ने। संगीत से सजाया है इस गीत को अनु मलिक ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों को अभी आपने सुना, फिल्म थी कच्चे धागे। आइए सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म फिजा से, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जुबेदा फिल्म से, कविता कृष्णामूर्ति की आवाज़ें हैं।

राहत फतेह अली खान की आवाज़ों को भी आप सुन रहे थे, फिल्म थी रेड। आइए सुनवाते हैं अगला गीत सपने साजन के। इस फिल्म से इसको गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

संघर्ष फिल्म का गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम की आवाजें थी। आइए सुनवाते इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजें, और फिल्म है दिल।

0: इस प्यारे से गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम

तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the one-off test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। कल सवेरे 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद, शुभरात्रि।